0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाघी ने कहा है कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वो दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यात्रा का लक्ष्य रसद, खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है।

0: नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मंडे मॉर्निंग और मैं हूं नवीन सक्सेना और आज मेरे साथ हैं रेनू। नमस्कार रेनू।
1: Namaskar Naveen and a very warm welcome to all our listeners tuned to Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani network on this beautiful Monday morning.
0: रेनु, मंडे मॉर्निंग को सबसे पहले जो बात याद आती है वो ये याद आती है गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो न्यूटन ने कहा था कि हर एक चीज आपको खींचती है अपनी तरफ। मंडे को आपका बेड आपको खींचता है कि अरे कहाँ जा रहा है, सुबह सुबह उठकर दो छुट्टियां तेरे पास है, और वहीं आपका ऑफिस आपको खींचता है कि कहाँ आओ मेरी तरफ। और इसी जद्दोजहद में हम उठते चले जाते हैं और एक मशीन की तरह तैयार हो जाते हैं और ऑफिस निकल पड़ते हैं। और यही मशीन सुबह सुबह जानते हैं क्या करती है, रेडियो का वॉल्यूम ऑन कर देती है, क्योंकि उसको आज सवेरे सुनना होता है, उसको सुनना होता है कि आज दिन भर उसके दो एंकर उसको कैसे तैयार करेंगे दिन भर की जद्दोजहद से लड़ने के लिए।
1: बिल्कुल, वी हैव सो मच इन स्टोर फॉर यू डियर लिसनर्स, वेयर इन वी आर गोइंग टू गिव यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 7th ऑफ सितंबर। सो स्टे विद अस टिल 8 o'clock एंड वी आर गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर टुडे।
0: नजर डाल लेते हैं सबसे पहले पहली खबर पर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है, क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टेकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति, नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर, गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गोवा दौरे के अंतिम दिन राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगे और ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा।
2: अमित शाह आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में पश्चिमी राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद वे गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान करेंगे। समारोह तालगांव के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में होगा। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर, जिसे राष्ट्रपति का निशान भी कहा जाता है, किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। गोवा पुलिस को यह सम्मान उसकी वर्षों की सेवा, अनुशासन और लोगों के प्रति समर्पण के लिए दिया जा रहा है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार।
1: Indian Space Research Organization ISRO has issued a clarification on reports circulating in the media regarding the speculations and misinformation that there is an attempt to privatize ISRO or reduce its role. In a social media post, ISRO said that it will neither be privatized nor will its importance be diminished. It added that participation of the private sector in space is aimed at enabling ISRO to focus even more strongly on the next generation of India's space program while industry scales up mature technologies and capabilities.
0: Baat Delhi ki. दिल्ली में कल एक बहुत भयावह हादसा हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में इमारत ढहने की

0: घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था, बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। PG के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
0: इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है।
2: मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव अरराइव्ड इन दुबई यस्टरडे ऑन अ 3-day विजिट टू UAE। ही विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग कांग्रेस इन दुबई एंड विल एंगेज विद इन्वेस्टर्स पिचिंग मध्य प्रदेश एज एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। आउटलाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द विजिट, ही सेड दैट द गोल इज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन एवरी सेक्टर इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक्स, माइनिंग, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स and artificial intelligence to boost trade and create new employment opportunities for the youth of the state, expressing confidence that investors will become partners in Madhya Pradesh's journey of development. The chief minister said that more than 900 outdated laws were abolished along with several policies to simplify procedures and reduce delays.
0: रेनू, हमारा देश लोक संस्कृति, पर्वों, त्योहारों और खान पान से समृद्ध है। चाहे कोई भी इलाका हो, कोई भी शहर हो, कोई भी स्थिति हो, हम उत्सव मनाने से नहीं चूकते।
2: जी बिल्कुल।
0: आइए अब अपने सुनने वालों को हम सीधा जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर में 2 दिन के भव्य लोक महोत्सव का समापन कल शाम रामबन जिले में हुआ।

0: Grand Folk Festival culminated last evening at the picturesque meadow of Sunaseri Gugludhar in Ramban district, showcasing the rich folk traditions, cultural heritage and ethnic identity of the Pahari community. The festival was organized by the locals in collaboration with the district administration, Ramban, Directorate of Tourism, Jammu and Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages, with the objective of promoting indigenous culture and strengthening the potential of Sunaseri as an emerging rural and eco-tourism destination. और हम बात कर रहे हैं festivals की और इसी में मध्य प्रदेश से भी हमारे पास एक और news है. The royal procession of Lord Mahakaleshwar in Ujjain will be broadcast live on Akashwani today. Akashwani Ujjain will broadcast the procession continuously from 2 p.m. to 10 p.m. The broadcast will be available on all Akashwani stations in Madhya Pradesh. Devotees can also listen to the broadcast on FM 102.5 MHz and on the News on Air mobile app. The broadcast will cover the full route of the procession, important stops, religious rituals and the devotion of the devotees. This special coverage has been nominated for the World Book of Records and the Limca Book of Records.
1: तो आकाशवाणी आपके जीवन की तमाम घटनाओं को छूता है, चाहे वो त्योहार हो, चाहे वो भक्ति से जुड़ा हो, चाहे वो खेलों से जुड़ा हो या फिर राजनीति हो.
0: जी.
1: खेलों पे भी नजर डाल लेते हैं. भारत ने AFC Under 20 फुटबॉल एशिया कप में जगह बना ली है. भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 सालों में पहली बार इस प्रतियोगिता में अपनी जगह बनाई है.
0: एंड गुड न्यूज इन द बैडमिंटन अरीना ऑल्सो नवीन. इन बैडमिंटन इंडियन पेयर ऑफ सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी क्लिंच द मेन्स डबल्स टाइटल एट द चाइना मास्टर्स इन शेंजन. द इंडियन ड्यूओ डिफीटेड चाइनाज ही जिंग टिंग एंड रेन जियांग यू 11-21, 21-13, 21-17 in the summit clash yesterday to secure India's first ever title at the China Masters. The victory marks the duo's second title of the season.

0: और अब नज़र डाल लेते हैं आपके शहरों की, क्या कुछ हो रहा है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में।
1: जी, सो गोइंग टू चेन्नई फर्स्ट. नवीन, वी नो एलिफेंट डेथ्स व्हाइल क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक्स एंड रोड्स आर अ मेजर कॉन्वर्जेशन क्राइसिस इन आवर कंट्री, व्हिच इज ड्रिवन बाय हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन एंड स्पीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड देर इज सो मच दैट द गवर्नमेंट हैज नाउ स्टार्टेड डूइंग ऑन दिस.
0: उसके अलावा भी सरकार ने हर हाईवे पे, हर जगह पे, जंगल में जब आप क्रॉस कर रहे होते हैं, उन्होंने जगह जगह बैनर लगाए हुए हैं, पोस्टर लगाए हुए हैं, इन्फॉर्मेशन लगाई हुई है जिसपे साफ साफ लिखा होता है कि ये जो रास्ता है वो जानवरों के पार करने के लिए रास्ता है, ये जो रास्ता है ये उनके लिए रास्ता है, लेकिन उसके बाव

0: है, ये जो रास्ता है ये उनके लिए रास्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं समझते हैं. दिस इज सिविक सेंस.
1: दिस इज यस, दिस इज ऑल्सो सम गुड न्यूज फ्रॉम चेन्नई मेट्रो दैट वी हैव रिगार्डिंग दिस, कि वहां पे गवर्नमेंट क्या कर रही है. द मद्रास हाई कोर्ट हैज ग्रांटेड 3 मोर मंथ्स पीरियड टू द तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू नोटिफाई द एलिफेंट कॉरिडोर्स इन द स्टेट. अ स्पेशल डिविजन बेंच ऑफ जस्टिस एन सतीश कुमार एंड जस्टिस के राजशेखर पास द ऑर्डर एज द डिपार्टमेंट सबमिटेड दैट अ स्टडी इज प्रेजेंटली बीइंग अंडरटेकन टू असर्टेन whether all the identified areas are required to be notified as elephant corridors. Moving on to another news from Chennai, State Health Minister Dr. Arun Raj inaugurated an awareness rally on eye donation yesterday at Chennai. Interacting with the media, he said that Tamil Nadu stood first in organ donation as there is much awareness about it. He also explained several steps in handling health issues in the state. The minister told that the state government has been taking proactive steps in the control of dengue. He said special wards have been dedicated to tackle dengue. चलते हैं आपके पास,
0: रुख करते हैं दिल्ली का.
1: जी,
0: दिल्ली को देश की स्टार्टअप और इनोवेटिव राजधानी बनाने की दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली स्टार्टअप और इनक्यूबेशन नीति पर आयोजित एक विशेष गोलमेज बैठक में सहभागिता की. इस बैठक का उद्देश्य दिल्ली स्टार्टअप और इनक्यूबेशन नीति को प्रभावी बनाने के लिए उद्योग जगत और स्टार्टअप समुदाय से प्रत्यक्ष सुझाव प्राप्त करना था. अगली खबर, दिल्ली सरकार ने कल वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के प्रयासों में जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदूषण मुक्त दिल्ली अभियान की शुरुआत की. इसका उद्देश्य राजधानी में वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई और नागरिकों तथा सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है. वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल शालीमार बाग और पीतमपुरा में कई विकास कार्यों और परियोजनाओं का शुभारंभ किया. इन परियोजनाओं से क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था, पार्कों के सौंदर्यीकरण और सड़क संपर्क को और मजबूती मिलेगी.
1: एंड नवीन, वी नो दैट आजकल हमारी कंट्री में स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है.
0: बिल्कुल.
1: सो रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, वी हैव सम न्यूज फ्रॉम बेंगलुरु मेट्रो. कर्नाटका एनर्जी एंड टूरिज्म मिनिस्टर के जे जॉर्ज एक्नॉलेज द रिच स्पोर्टिंग लेगेसी इन कोडगु डिस्ट्रिक्ट एंड अश्योर दैट स्टेप्स विल बी टेकन टू डेवलप स्पोर्ट्स टूरिज्म हियर. He was speaking after flagging off the Kodagu Monsoon Half Marathon at Coorg Public School and in Gonikoppal near Madikeri yesterday. The minister pointed out that Kodagu has produced several accomplished sportspersons at the national and international levels and continues to attract visitors with its distinctive natural settings and salubrious climate. Hence, he stressed that there is a considerable scope to combine these strengths and promote activities such as marathons, cycling, trekking and other outdoor sporting events as part of the Kodagu's tourism offerings.
0: स्पोर्ट्स टूरिज्म, बहुत अच्छा शब्द एक निकल कर आया है.
1: जी.
0: और रेनु, कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद अगर खेलों को और बढ़ावा दिया जाए तो कम से कम उस कहावत को तो हम बिल्कुल झुटला सकते हैं जो कहती थी कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब.
1: जी.
0: हम तो कहेंगे भाई खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब.
1: जी.
0: क्योंकि आजकल बिल्कुल यही हो रहा है.
1: Yes.
0: अगर आप वाकई स्पोर्ट्स में बहुत परफेक्ट है तो किसी न किसी मुकाम को हासिल कर ही सकते हैं. और सरकार जिस तरह से, अभी रेणु ने भी बताया कि सरकार जिस तरह से बढ़ावा दे रखी है तो वो आपको हाथ पकड़कर और आगे ले जाएगी, आपका हाथ नहीं छोड़ेगी. आप एक कदम बढ़ाएंगे तो सरकार की नीतियां आपको दो कदम और आगे बढ़ के और आगे ले जाएंगी.
1: एंड यस, देयर आर सो मेनी ऑफ अस, यू नो नवीन, वी हैव सीन कि जिनके पास टैलेंट इतना है स्पोर्ट्स में लेकिन थोड़ा सा उन्हें लगता है कि पता नहीं हम इतनी पॉपुलेशन में आगे बढ़ पाएंगे या नहीं. बट यहीं पर ही प्लीज डोंट शाई फ्रॉम दिस, आगे बढ़िए, अपने टीचर्स के पास जाइए, अपने प्रोफेसर्स के पास जाइए, उन्हें बताइए कि आप किस फील्ड में अच्छे हैं और वो भी आपको उतनी ही मदद करेंगे जितने की गवर्नमेंट करेगी.
0: और अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नहीं भी कर पाते तो भी कोई नहीं मेरे दोस्त, खेलिए, बाहर निकलिए. और ये जो मोबाइल हाथ में देके आप बहुत सारे गेम ऑनलाइन खेल रहे हैं ना, छोड़ दीजिए इन्हें. और जैसा कि हमने भी बात करी, स्पोर्ट्स टूरिज्म, दिस इज द परफेक्ट वर्ड. और अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो कम से कम एक दिन तो उसके लिए निकाल लीजिए.
1: बिल्कुल, सो ट्रू.
0: और अब रुक करते हैं मुंबई का. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतियोगी परीक्षाओं के शिक्षकों और छात्रों को एमपीएससी परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और अनुचित साधनों के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है. महाराष्ट्र लोक स्वास्थ्य विभाग जिला सर्जनों और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए वार्षिक वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन ग्रेडिंग प्रणाली शुरू करेगा,

0: पिछले 3 वर्षों में उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन 100 अंकों के पैमाने पर किया जाएगा और इसे ए बी सी और डी ग्रेड में वर्गीकृत किया जाएगा। अगली खबर, मुंबई मेट्रो रेल निगम ने गणेशोत्सव के दौरान मेट्रो लाइन 3 यानी एक्वा लाइन पर सेवाएं आधी रात तक बढ़ाने का फैसला किया है। 14 से 25 सितंबर तक कफ रोड और आर ए जेवलियार स्टेशनों से मेट्रो का आखिरी जो सेवा है वो 10:30 बजे के बजाय आधी रात तक के लिए होगी।
1: जी, एंड मूविंग ऑन टू हैदराबाद मेट्रो, द मॉनसून सेशन ऑफ द तेलंगाना असेंबली कमेंसिंग टुडे सेट फॉर अ टर्बुलेंट स्टार्ट विद द रूलिंग कांग्रेस मेन ऑपोजिशन बीआरएस एंड बीजेपी प्रिपेयरिंग टू कन्फ्रंट वन अनदर ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। Asserting his government's readiness to debate all matters, Chief Minister A. Revanth Reddy accused BRS President K. Chandrasekhar Rao of remaining confined to his farmhouse and avoiding assembly proceedings since his party's electoral defeat. Reddy challenged Rao to attend the session and discuss the performance of the current administration's first 1,000 days alongside the previous BRS regime's decade-long tenure. Rejecting the criticism, BRS Working President K.T. Rama Rao released a charge sheet highlighting unfulfilled election guarantees, pointing to growing distress among farmers, youth and women. The opposition plans to raise key issues including pending tuition fee reimbursements and student incentive schemes.
0: Kolkata hamesha se hi hamare desh ka ek sanskritik shahar raha hai, phir chahe usme cinema ho ya phir natak ho ya phir sangeet ho. Isi ke chalte mahan abhineta Uttam Kumar ke janm shatabdi samarof ka pehla charan kal sampann hua. नंदन वन, नंदन टू और राधा स्टूडियो में फिल्म स्क्रीनिंग के साथ दोपहर में शिशिर मंच पर उत्तम कुमार की स्मृति में एक विशेष चांदी का सिक्का जारी किया गया। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। राज्य मंत्री पूर्णिमा चक्रवर्ती, दिग्गज अभिनेता बिस्वजीत चटर्जी और प्रसन्नजीत चटर्जी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया।
1: जी,
0: पलटते हैं आज सवेरे का एक और पन्ना और मौसम का रुख करते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली में आज भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और कल जिस तरह की बारिश हुई थी वो भी आज दिल्ली में कहीं कहीं देखने को जरूर मिलेगी। तापमान 24 डिग्री और 34 डिग्री के बीच रहेगा। मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी मानसूनी रंग जो है वो छाया रहेगा। तापमान 26 डिग्री और 32 डिग्री। और जिस तरह से हम हर बार कहते हैं कि भाई बारिश तो मुंबई वालों की दोस्त है, सहेली है, तो उसे वो हमेशा साथ लेके ही चलते हैं। कोलकाता का भी लगभग यही हाल है। बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना और तापमान 26 से 32 डिग्री, करीब करीब एक जैसा हाल तीनों शहरों का।
1: एंड चेन्नई विल हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस व्हाइल द मैक्सिमम इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 36 डिग्रीज। बेंगलुरु विल हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस व्हाइल द मैक्सिमम मे रीच 32 डिग्री सेल्सियस। एंड हैदराबाद will also have partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The minimum temperature will be around 24 degrees Celsius, while the maximum may reach 32 degrees Celsius.
0: और अब बातें आज के दिन के इतिहास की।
1: जी, and today Naveen, we are observing a very special day, जो कि हम दिल्ली वालों को बहुत कम ही देखने को मिलता है, but still. We are observing the International Day of Clean Air for Blue Skies, also known as the Blue Sky Day.
0: Wow, ये बहुत अच्छा है भाई।
1: So observed annually on 7th of September, the day aims to raise awareness about air pollution and its impact on human health and the environment. The day was established by the United Nations General Assembly in 2019 and was first observed in 2020. It calls for stronger efforts to reduce air pollution and promote clean and sustainable practices. It also reminds us that clean air is a basic necessity and a shared responsibility for a healthier and sustainable future.
0: तो अगर आप आज इस दिन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक छोटी सी बात कीजिए, रेड लाइट पर अपनी गाड़ियों को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दीजिए और नंबर को देखते रहिए, 10 सेकंड पहले ऑन कर लीजिए, कहीं ना कहीं हम कुछ तो कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे ना।
1: और दिवाली भी आने वाली है 1-2 महीने में, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा कि पोल्यूशन कम से कम हो,
0: नहीं तो अगले 3 महीने दिल्ली वालों के लिए कैसे गुजारने पड़ सकते हैं हम सब जानते हैं ना।
1: बिल्कुल। सो लेट्स गो ऑन टू मोर इवेंट्स दैट हैपेंड ऑन दिस डे इन हिस्ट्री। एंड बिगनिंग विद द ईयर 1812, the Battle of Borodino was fought between Napoleon's French army and Russian forces.

0: forces during the Napoleonic Wars.
1: आज के दिन सन 1822 में दक्षिण अमेरिका के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन का रूप है. इसी दिन ब्राजील ने पुर्तगाल से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी.
0: One canal, two oceans, huge global importance. The day, 7th of September 1977, the United States and Panama signed treaties providing for the eventual transfer of control of the Panama Canal to Panama.
1: 7 सितंबर 1927 टेलीविजन के इतिहास का बहुत बड़ा दिन. अमेरिकी आविष्कारक फिलो फॉन्सवर्थ ने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण सफलता आज ही के दिन हासिल की थी. और सोचिए, आज हम जब मोबाइल पर लाइव टीवी देखते हैं, ओटीटी देखते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, कहा कभी किसी ने सोचा था कि ये सब पॉसिबल होगा, लेकिन हुआ
0: है. एंड फाइनली वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स इन इंडिया स्पेस जर्नी ऑन दिस डे 7th ऑफ सितंबर 2019 इसरोस चंद्रयान 2 मिशन attempted to land the Vikram lander on the moon. The lander lost communication during the final phase of its descent.
1: 7 सितंबर 1940 द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे भयावह दौर. इसी दिन जर्मन वायुसेना ने ब्रिटेन और खासकर लंदन पर बड़े पैमाने पर बमबारी शुरू की थी, जिसे इतिहास में द ब्लिट्स के नाम से जाना जाता है. और बात आज के दिन सन 1936 की. ऑस्ट्रेलिया के हॉबर्ट चिड़ियाघर में आखिरी ज्ञात थैलासीन, जिसे थैलासीन टाइगर भी कहा जाता है, बेचारा गुजर गया था. उसका नाम बेंजामिन था और इसके बाद ये प्रजाति विलुप्त मानी जाती है. तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से. और अब बात करते हैं उन व्यक्तियों की, उन व्यक्तित्व की जो आज से जुड़े हुए हैं. कहते हैं कि कुछ तारीखें कैलेंडर पर होती हैं और कुछ तारीखें इतिहास में. तो आज की तारीख में सबसे पहले हम याद करेंगे सुनील गंगोपाध्याय को. आज ही के दिन सन 1934 में उनका जन्म हुआ था. बांग्ला साहित्य के बेहद लोकप्रिय साहित्यकार, कविता, उपन्यास, पत्रकारिता, ये सब उनकी देन थी. और उनके लेखन में प्रेम भी था. जो उन्हें जानते हैं, जो उन्हें पढ़ते हैं, उनके साहित्य को भी जानते होंगे.
0: Yes, and today we are paying tributes to Warren William Zevon, who was an American rock singer, songwriter, and musician. Zevon's most famous compositions include Werewolves of London, Lawyers, Guns and Money, and Roland the Headless Thompson Gunner, all of which are featured on his third album. And here we are going to listen to Warren Zevon singing Knocking on Heaven's Door.

0: और अब बात एक ऐसी महिला की जिन्होंने हजारों नहीं बल्कि लाखों महिलाओं के जीवन को बदलने की दिशा में काम किया। आज के दिन सन 1933 में उनका जन्म हुआ था, नाम ईला रमेश भट्ट। उन्होंने भारत में सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन यानी सेवा की स्थापना की थी, वो उसकी संस्थापक रही हैं और कई प्रतिष्ठित पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है।
1: And today we are also paying tributes to Jennifer Kendall Kapoor, who was an English actress and founder of the Prithvi Theatre. She was nominated for the BAFTA Award for Best Actress in a Leading Role for the film 36 Chaurangi Lane. And her other film appearances are Bombay Talkie, Junoon, Heat and Dust. And here we are listening to the song Ishq Ne Todi Sar Par Qayamat. Dear, the music director was Vanraj Bhatia and the singer is Mohammad Rafi. So from the movie Junoon, let's listen into this beautiful song.

0: अजी जयंती है संस्कृत के महान विद्वान दार्शनिक और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के गहरे अध्येता गोपीनाथ कविराज की। आज ही के दिन 1887 में उनका जन्म हुआ था और आज ही जन्म हुआ था बानो जहांगीर कोयाजी का, जिन्होंने भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक और परिवार नियोजन विशेषज्ञ थी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने इस संदर्भ में।
1: Today is the birthday of Muhammad Kutty Paniparambil Ismail, better known as by the stage name Mammootty, who is an Indian film actor and producer who works in Malayalam cinema. And Naveen, he has won 3 national

और अब मिलिए भारतीय सिनेमा की एक ऐसी महिला से जिनके लिए शायद एक ही परिचय काफी नहीं है, पी भानुमति। पलिवई भानुमति रामकृष्णन तेलुगु सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में जानी जाती हैं। तेलुगु और तमिल भाषाओं की 100 से अधिक फिल्मों में दिखाई दी, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, अभिनेत्री, निर्देशक, संगीत निर्देशक, गायिका और निर्माता।

0: और ये अब आपको एक बार फिर बॉलीवुड सिनेमा के लिए चलते हैं। फिल्मों की दुनिया में कुछ निर्देशक ऐसे होते हैं रेणु, जो सिर्फ कहानी नहीं सुनाते बल्कि अपने दौर की धड़कन को पर्दे पर उतार देते हैं
1: जी।
0: और उन्हीं में से एक थे बी.आर. इशारा, जिनकी आज जयंती है। खूबसूरत फिल्में बनाई हैं, कई खूबसूरत गीत उनकी फिल्मों के थे। सबसे पहले इस गीत से उनको याद करते हैं, रस्म उल्फत को निभाए न बने।

बी आर अशारा की फिल्मों में रिश्तों की उलझन थी, सामाजिक सवाल थे और समय के बदलते हुए शहरी जीवन की झलक थी। और अब ऐसी कहानियों के साथ हमेशा आशा, प्रेम और जुदाई के गीत तो जुड़े रहते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत गीत है उनकी फिल्म का चलते चलते। आइए उस गीत के साथ हम उन्हें याद करते हैं।

0: आज सवेरे के आज के संस्करण में बस इतना ही, एक छोटी सी बात याद रखिएगा। हो सकता है कि हम इतिहास की किताब में अपना नाम ना लिख पाएं, लेकिन अपने आसपास की दुनिया में एक अच्छी कहानी जरूर लिख सकते हैं जो जिंदगी भर लोगों को हमें याद दिलाती रहेगी। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। अब मुझे और रीनू को दें इजाजत।
1: एंड स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश। एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे।
0: नमस्कार।

0: मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, इसे निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 30-3 से हराकर 20 वर्ष बाद AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास फ्रांस में भारतीय सैनिकों के बलिदानों का गवाह है। श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस संभावना को भी एक नया आयाम दिया है।
1: भारत फ्रांस ज्वाइंट वेंचर्स की संभावनाओं पर बातें होती है। स्वामीनारायण मंदिर ने इस संभावना में भी एक नया आयाम जोड़ा है। ये मंदिर मेड इन इंडिया है और बिल्ट इन फ्रांस है। इसके काफी पत्थरों को भारत में तराशा गया है। भारत की प्राचीन प्रतिभा यहाँ फ्रांस में आधुनिक इंजीनियरिंग से आकर जुड़ चुकी है। पेरिस में इस भव्य मंदिर ने आकार लिया है, इसलिए मैं आशा करता हूँ ये मंदिर सदियों तक भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और संभावनाओं का भी प्रतीक बनकर उभरेगा।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए।
2: भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। PG के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
0: मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मृतकों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। NDRF, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और NDRF के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध इमारतें तत्काल सील की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश कॉलेज आज इस हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। वहीं आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण

0: जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यवसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी, जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है।
5: इस बैठक में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेंगे। परिषद का यह मंच आपसी सहयोग को बढ़ाने और साझा हितों से जुड़े मामलों पर मिलकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। बैठक में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वे दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई देशों ने अपना व्यापार बढ़ाया है।
6: प्रदेश से जुड़ करके कई सारे देशों ने भी अब अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है और यही कारण है कि पिछले साल ही हमारा 76,000 करोड़ का निर्यात मध्यप्रदेश से हुआ। ऐसे में हम अपने इस व्यापार व्यवसाय के साथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, सभी के लिए समृद्धि और परस्पर द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों कटिबद्ध हैं।
0: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और एक सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के अंतर्गत सिक्कों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जाँच जारी है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
7: इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन

0: करीब 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई प्रतिदिन करीब 16,50,000 बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास जारी व्यवधानों सहित तेल निर्यात में रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन के भव्य लोक महोत्सव का समापन कल शाम रामबन जिले में हुआ। महोत्सव में पहाड़ी समुदाय की समृद्ध लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और जातीय पहचान का प्रदर्शन किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 0112331041, 0112371717 और 0112331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद सरफिरोजी। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को दिया है नक्सलवाद खत्म किया, देश को अब ड्रग्स मुक्त बनाएंगे, ड्रग्स मुक्त युवाओं से 2047 में विकसित भारत का नेतृत्व करने का आह्वान। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के इस कथन को सुर्खी बनाया है पूरा जम्मू कश्मीर हमारा, नक्शे में यही दिखे, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा भारत की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। हिंदुस्तान के अनुसार भारत ने बाल विवाह और जबरन विवाह रोकने के लिए 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। दैनिक भास्कर ने अपने आर्थिक पन्ने पर लिखा है महिलाओं के काम पर जाने से घरों में बराबरी बढ़ी, एक शोध के अनुसार महिलाओं के नौकरी करने का असर सिर्फ परिवार की आय पर नहीं पड़ता, घर में उनकी स्थिति भी बदलती है। 2025 की एक श्रम सेवा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 में से 39 महिलाएं काम कर रही हैं। दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप से 4,00,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, पंजाब केसरी की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति की घोषणा की। दैनिक भास्कर लिखता है नए विचारों और उद्यमशीलता को गति देने के लिए सरकार की बड़ी पहल, स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 400 करोड़ का बजट। कई अखबारों ने अपने खेल पृष्ठ पर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पहली चाइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताबी जीत को सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए, इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headline.

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है, क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों

भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने बताया कि हादसे में घायल हुए 11 मरीजों को चिकित्सा के लिए लाया गया है। इन 11 मरीजों में से 5 को मृत अवस्था में ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जबकि एक अन्य घायल की बाद में मृत्यु हो गई। 3 घायलों का इलाज जारी है। एक घायल की सर्जरी की गई, जबकि एक अन्य को निगरानी में रखने के बाद छुट्टी दे दी गई। इस बीच आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआ की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि आरटीआ और बिनौती ज्वारिज मार्ग से आने वाले मार्गों पर भी यातायात प्रभावित होगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि यदि संभव हो तो इन मार्गों से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप शामिल हैं। श्री शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं, जबकि गोवा के मुख्यमंत्री इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री बेटेल आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। ओपेक समूह प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया के उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा, न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सिंह के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दशकों पहले श्री प्रभुपाद स्वामी जी भी फ्रांस आए थे और इस्कॉन के माध्यम से उन्होंने भारत और फ्रांस के बीच आध्यात्मिक संबंधों में एक नया अध्याय खोला।
1: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सहचित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास फ्रांस में भारतीय सैनिकों के बलिदानों का गवाह है। श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस संभावना को भी एक नया आयाम दिया है।
1: भारत फ्रांस ज्वाइंट वेंचर्स की संभावनाओं पर बातें होती है। स्वामीनारायण मंदिर ने इस संभावना में भी एक नया आयाम जोड़ा है। ये मंदिर मेड इन इंडिया है और बिल्ट इन फ्रांस है। इसके काफी पत्थरों को भारत में तराशा गया है। भारत की प्राचीन प्रतिभा यहाँ फ्रांस में आधुनिक इंजीनियरिंग से आकर जुड़ चुकी है। पेरिस में इस भव्य मंदिर ने आकार लिया है। इसलिए मैं आशा करता हूँ ये मंदिर सदियों तक भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और संभावनाओं का भी प्रतीक बनकर उभरेगा।
0: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री बेटेल आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वे दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई देशों ने अपना व्यापार बढ़ाया है।
2: प्रदेश से जुड़ करके कई सारे देशों ने भी अब अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है और यही कारण है कि पिछले साल ही हमारा 76,000 करोड़ का निर्यात मध्यप्रदेश से हुआ। ऐसे में हम अपने इस व्यापार व्यवसाय के साथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, सभी के लिए समृद्धि और परस्पर द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों कटिबद्ध है।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कल कीव में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात कर रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
3: वार्ता के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि क्षेत्रीय मुद्दे का समाधान अंततः केवल राष्ट्रीय नेताओं के स्तर पर ही संभव हो सकता है। उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों, सुरक्षा गारंटी, यूक्रेन के भविष्य और आर्थिक पुनर्निर्माण योजना पर 3 दौर की वार्ता की। विटकॉफ ने बताया कि अमरीकी प्रतिनिधिमंडल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई पिछली चर्चाओं से विचार लेकर आया था। उन्होंने कहा कि अमरीका इस संघर्ष का कूटनीतिक समाधान चाहता है। कुशनर ने कहा कि रूस के उद्देश्यों को भविष्य के लक्ष्यों के साथ साथ ध्यान में रखना होगा। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सैन्य शक्ति सुरक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनी रहनी चाहिए और उन्होंने स्थायी शांति

0: स्थिति सुनिश्चित करने के मदद के लिए भविष्य की परामर्श बैठकों में यूरोपीय भागीदारों के शामिल होने का स्वागत किया। यह बातचीत अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच जारी चर्चा में गति बनाए रखने के प्रयासों को दर्शाती है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से चाह सिंह।
1: ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई प्रतिदिन करीब 16,50,000 बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास जारी व्यवधानों सहित तेल निर्यात में रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। संयुक्त अरब अमीरात इस वर्ष मई में राष्ट्रीय हितों का हवाला देते हुए ओपेक प्लस से अलग हो गया था। उसने कहा था कि वह बाजार की तत्काल जरूरतों को पूरा करने में प्रभावी योगदान देना चाहता है। ओपेक प्लस की अगली बैठक अक्टूबर में होने की उम्मीद है, जिसमें वैश्विक बाजार की स्थिति और तेल उत्पादन की समीक्षा की जाएगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा।
3: सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल SNSC के सचिव मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने कहा कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी वाली सीमा से शुरू होकर फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक फैलेगा। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार जलडमरू मध्य की ओर किसी भी दिशा से आने वाले और इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जहाजों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। मेजर जनरल रिजाई ने कहा कि ईरान द्वारा जलमार्ग बंद किए जाने के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही में भारी कमी आई है। ने यह भी दावा किया कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया गया है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: भारत ने AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC Under-20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल से वार्ता करेंगे। ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष बाद AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good morning, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India-France strategic partnership is special because it rests upon strong foundation of long-standing cultural and political connections. External Affairs Minister S. Jayashankar to hold talks with Deputy Prime Minister of Luxembourg, Xavier Bettel, in New Delhi today. Ukrainian President Vladimir Zelensky meets U.S. Special Envoy Steve Witkoff and Jared Kushner in Kyiv to discuss ending Russia-Ukraine conflict. OPEC Plus countries decide to keep oil production target for October unchanged. And in football, India qualify for AFC Under-20 Asian Cup after 20 years following 3-0 victory over Bangladesh in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy.

0: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டு மகிழ்ந்தது 100.1 MHz FM கோல்டு வழங்கிய சுகமான ராகங்கள்.
1: தோள் கொடுப்பதில் தோழனாய், கற்றுக் கொடுப்பதில் ஆசானாய், வழிகாட்டுவதில் சான்றோனாய், சிறியவர் பெரியவர் இளைஞர்கள் பெண்கள் இவர்களின் முன்னேற்றத்தில் உங்கள் அகில இந்திய வானொலி. அனைத்து இயற்கை சீற்றங்களிலும் சிதையாமல் உங்களுடன், அனைத்து இடர்பாடுகளிலும் இடைவிடாமல் உங்கள் சேவையில் அகில இந்திய வானொலி.
0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है, क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
3: प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
2: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ आज सत्य निकेतन इलाके में ढही इमारत स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का लगभग 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
4: ये निश्चित है कि बेसमेंट में पानी था और पानी भरने के कारण जो रिपेयर हो रही थी उसके कारण से पुरानी बिल्डिंग थी और वो ढह गई। अभी इसमें 12 लोग जो मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 जो हैं अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स जो हैं हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा।

0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुखद घटना हुई है।
1: इस बिल्डिंग पे भी कार्रवाई हो गई, इसके मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवर बेटल की आज नई दिल्ली में मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बेटल की यह यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन देशों ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69.38 अंक गिरकर 76,446 पर और निफ्टी 14.55 अंक गिरकर 23,883 पर कारोबार कर रहा था। भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु में तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. Speaking during inauguration of the Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. The Prime Minister added, together with President Emmanuel Macron, both countries are building a special global strategic partnership.
3: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
2: दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता अलॉन्ग विद दिल्ली मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा visited the site of the building collapse in the Satyaniketan area of New Delhi this morning. She took stock of the situation. Talking to the reporter, she said that around 80% of the debris has been cleared from the side of the decades-old multi-story building. The chief minister informed that 12 people have been recovered, of which 6 have died while 6 are in stable condition. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has ordered a magisterial inquiry into the incident and directed registration of an FIR against the building owner.

0: மெல்லிசை கேட்டீர்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस परिषद में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वडोदरा में प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुरक्षा उपायों और जारी बचाव अभियान की समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
2: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है, उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा।
2: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
1: इस बीच भवन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा और कई अन्य नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि सोन नदी के जलस्तर में कमी से कुछ राहत मिली है। सोन नदी पटना

0: हरियाणा के पास गंगा में मिलती है। इसमें पानी कम होने से दीघा तथा गांधी घाट पर गंगा के जलस्तर का दबाव कम हुआ है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। उधर मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले चार दिन तेज बारिश का अलर्ट है। रीवा और सागर संभाग के छह जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवर बिटल की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बिटल की ये यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। ओपेक प्लस समूह के सात प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 485 अंक गिरकर 76,000 पर और निफ्टी 145 अंक गिरकर 23,753 पर कारोबार कर रहा था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की आज शाही सवारी का आयोजन हो रहा है। अंतिम शाही सवारी में भगवान महाकाल के सात अलग अलग रूपों के दर्शन होंगे। सवारी शाम 4 बजे मंदिर से शुरू होगी और महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा और रामानुज कोट होते हुए राम घाट पहुंचेगी। आकाशवाणी उज्जैन दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक इसका लगातार प्रसारण करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Home Minister Amit Shah is chairing the 28th meeting of the Western Zonal Council in Panaji today. Chief ministers and senior ministers of Goa, Gujarat and Maharashtra, along with representatives of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, are participating in the meeting. The council provides a structured platform to discuss issues affecting two or more states or the centre and states together and strengthen mutual cooperation. Matters requiring coordinated action and those remaining unresolved at the official level could be taken up for consideration. Later, Amit Shah will present the President's police colour to Goa Police. The Enforcement Directorate ED has conducted searches at 7 premises in Kolkata, Delhi and Ranchi in connection with a case involving Akhbar-e-Mashriq Private Limited, an Urdu daily newspaper, and its director and TMC MP Nadeemul Haq. ED has recorded an enforcement case information report on the basis of an FIR registered by Bidhannagar Police Commissionerate. The investigation agency said the case relates to allegations concerning the publication and dissemination of material allegedly promoting communal disharmony. It said the case also contains allegations regarding illegal transactions, unaccounted cash transactions and funding from suspicious sources. Delhi Chief Minister Rekha Gupta, along with Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa, visited the site of the building collapse and took stock of the situation in the Satyaniketan area of New Delhi this morning. Talking to reporters, Ms. Gupta stated that the government is in touch with the parents of the affected students.
2: Around 80% of the debris has been removed. Only debris equivalent to the basement levels remain. So far, 12 people have been found, of whom 6 are dead and 6 are in stable condition. We are in touch with the parents of all of them and are making every possible effort to ensure that they do not face any difficulties. Action will be taken against the owner of the building. All dangerous buildings in the surrounding area will also be identified and demolished.
1: Manjinder Singh Sirsa said the National Disaster Response Force team is continuously engaged in the operation. Mr. Singh said the Chief Minister has directed the Commissioner and the Chief Secretary to immediately suspend all officials responsible for this matter and to take strict action. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar met Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Luxembourg, Xavier Bettel, in the national capital today. In a social media post, Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said the visit provides an opportunity to further strengthen the multifaceted relations between India and Luxembourg. Mr. Bettel arrived in New Delhi for an

0: Benchmark domestic equity indices extended losses. During the afternoon session today, the Sensex declined 467 points to 76,049, while the Nifty fell 138 points to 23,760 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah chairs 28th meeting of Western Zonal Council in Goa. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar holds bilateral meeting with Luxembourg Deputy Prime Minister Xavier Bettel, says in an era where whole world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have a trusted relationship. Death toll in Delhi's building collapse rises to 7. MCD South Zone Deputy Commissioner for Engineers suspended. Enforcement Directorate conducts searches at 7 premises linked to TMC MP Nadimul Haq's Urdu Daily over money laundering. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आयना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में केंद्र और सदस्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें समन्वय और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों पर विशेष बल दिया गया।
2: बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। वे 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी माल गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर जिलों के लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने उपस्थित सभी लोगों को नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई। उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्य कृतियों का असमिया में अनुवाद करने की विश्वविद्यालय की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉ. जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
3: Ours is a very trusted relationship.
4: हमारा रिश्ता

0: बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
1: डॉक्टर जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार एक दूसरे से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अंतरिक्ष, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं को भी तराश रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत और लग्जमबर्ग के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर श्री बेटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। श्री बेटल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया और सुरक्षा उपायों तथा जारी बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
3: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
1: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम अभियान में निरंतर काम कर रही है।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है, जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी चाहे वो किसी भी रैंक का, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहाँ से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर, और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना होगा ताकि ये मनमर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना कर पाए।
1: इस बीच दक्षिण जोन के एमसीडी उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायक अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। भवन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया है कि मलबे की भारी मात्रा के कारण बचाव अभियान शाम तक जारी रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ बचाव अभियान के लिए विशेष और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है।
5: इसमें मतलब स्ट्रक्चर सर्च और रेस्क्यू के ऑपरेशंस में बेसिकली ब्रीचिंग सिस्टम, कटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो है इक्विपमेंट्स है सीमेंट और कंक्रीट काटने के लिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं इनको स्लैब्स को रिमूव करने के लिए, इन्फ्लेक्टेबल बैग्स वगैरह भी है जो इस्तेमाल करते हैं, और शोरिंग सिस्टम है कि हाइड्रोलिक शोरिंग है, वुडन शोरिंग है, ये डिपेंड करता है किस तरह का वहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या रिक्वायरमेंट है वो करते हैं, और डिटेक्शन सिस्टम इसमें केनाइन है या लाइट डिटेक्टर्स इक्विपमेंट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु एक मूलभूत आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ वायु जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: ये उन प्रयासों को पहचानने के लिए है जो पूरे देश में विभिन्न शहरों और वार्डों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि हवा की गुणवत्ता बनी रहे और प्रदूषक तत्व PM10 तथा PM2

0: 0.5 का स्तर उन सीमाओं तक नीचे लाया जाए जो नियामकों द्वारा तय की गई है। स्वच्छ हवा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है बल्कि ये एक व्यवहारिक लक्ष्य है जिसे समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर पर प्रभावी काम के माध्यम से हासिल किया जा सका है।
1: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बड़ी क्षमता है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और कल्याण एक्सपो संजीवनी 2026 में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी मजबूत चिकित्सा व्यवस्था के जरिए दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित करने चाहिए। श्री गोयल ने बताया कि पिछले 7 वर्ष में 35 लाख अंतर्राष्ट्रीय मरीजों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। आज शाम दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बने 2 मॉनसून सिस्टम ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इंदौर, उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में हल्की से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का असर राजधानी भोपाल में भी साफ नजर आया। यहां कलियासोत बांध के 2 गेट एक बार फिर खोलने पड़े। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है।
4: पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार समेत 12 जिलों की 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इधर गंगा के डाउनस्ट्रीम में हाथीदह, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर में नदी के रौद्र रूप से भयावह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पुनपुन और सोन नदी में अभी भी उफान जारी है। पूर्व मध्य रेलवे ने पुनपुन रेल पुल संख्या 21 पर सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज भी 10 मेमू रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया है। इस बीच आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने मुंगेर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: उधर नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363 हुई है। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 डूरंड कप के विजेता टीम वेस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। टेनिस में आरना सबालेंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की शीर्ष वरीयता प्राप्त आरना सबालेंका ने अमरीकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंट को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अमरीका के टॉमी पॉल को पराजित किया। भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 0112331 0481 2371 7117 दो तीन

0: 7107 और 2331-4444। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आरना सबालेंका तथा कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ஆகாஷ்வாணி நேரம் 2:30.
2: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz ஆகாஷ்வாணி சென்னை FM கோல்ட்.

0: ఆకాశవాణి చెన్నై కేంద్రం. మరికొద్దిసేపట్లో వార్తలు ప్రసారమవుతాయి. ఢిల్లీ నుండి రిలే.
1: इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे. निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी.
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच मजबूत और भरोसेमंद संबंध हैं. डॉक्टर जयशंकर ने आज ये बात नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान कही. विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया. डॉक्टर जयशंकर ने इस वर्ष के शुरू में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा का स्मरण किया. उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार बातचीत की है. विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं. इस अवसर पर श्री जेवियर बेटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्या निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया. मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है. श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये घटना हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है, उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा.
3: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा. विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा.
2: इस बीच पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता को राजस्थान की भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश दिए गए हैं. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है. गुवाहाटी विश्वविद्यालय में उपराष्ट्रपति ने आज उपस्थित सभी लोगों को नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई. श्री राधाकृष्णन ने कहा कि शैक्षिक संस्थानों का उद्देश्य सिर्फ अपनी रैंकिंग बढ़ाना नहीं बल्कि समाज में भी परिवर्तन लाने में योगदान देना है. उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह को लिखे एक लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया है. श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया है कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है. इसके लिए मानवीय जुड़ाव, शिक्षण पद्धति और विद्यार्थियों की क्षमताओं को पहचानने की क्षमता जरूरी है. लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहलें शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को मजबूत कर रही हैं. साथ ही हर शिक्षक के राष्ट्र निर्माण में योगदान को भी मान्यता दी जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र की यात्रा पर रहेंगे. वडोदरा में प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. श्री मोदी 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी समर्पित माल गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों का भी लोकार्पण करेंगे. प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे. प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबारे मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है. निदेशालय ने बताया कि मामला सांप्रदायिकता को कथित तौर पर बढ़ावा देने, संबंधी सामग्री के

0: www.mumbaiexpress.in. Kindly apply within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. CSIR, Northeast Institute of Science and Technology, Jorhat, a premier institute under the Council of Scientific and Industrial Research, an autonomous body under the Department of Scientific and Industrial Research, Government of India, invites online applications from enthusiastic, young, dynamic and talented citizens for recruitment to the post of Junior Stenographer, Junior Secretariat Assistant and Junior Hindi Translator. The post carry pay level 4 for Junior Stenographer, pay level 2 for Junior Secretariat Assistant and pay level 6 for Junior Hindi Translator. Later, as per the 7th CPC. The upper age limits are 27, 28 and 30 years respectively. The vacancies include reserved posts for unreserved SC, PWBD and ESM categories as specified in the detailed advertisement. The online application process closes on 28th September 2026 at 5 p.m. Candidates are advised to carefully read the detailed advertisement, eligibility conditions, reservation provisions and application instructions on the institute's website, that is at www.niest.res.in. I repeat, it is www.niest.res.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अपने मुख्यालय नई दिल्ली में प्रधान निजी सचिव के पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 22 सितंबर 2026। अन्य विवरण और आवेदन पत्र आप देख सकते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर, जिसका पता है www.try.gov.in। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन आमंत्रित कर रहा है अनुसंधान सहायक भेषज गुण विज्ञान के पद को भरने के लिए आवेदन। इच्छुक उम्मीदवार देख सकते हैं वेबसाइट cdsco.gov.in। राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत आमंत्रित कर रहा है योग्य भारतीय नागरिकों से वैज्ञानिक पदों के लिए आवेदन। पदनाम है वैज्ञानिक ग्रेड डी, रिक्तियां 1, वैज्ञानिक ग्रेड सी रिक्तियां 4, वैज्ञानिक ग्रेड बी रिक्तियां 5। आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश जैसे विस्तृत शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक एवं वांछनीय अनुभव मानदंड, आयु सीमा और अन्य सामान्य नियमों और शर्तों की पूरी जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान की आधिकारिक वेबसाइट nif.org.in। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत सक्रिय एएससी सेंटर दक्षिण बेंगलोर आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर और लाइब्रेरियन। आवेदन संबंधी आवश्यक दिशा निर्देशों, शैक्षणिक योग्यता, अर्हता, अनुभव, वेतनमान, तैनाती के स्थान और आरक्षण आदि की स्थिति की जानकारी के लिए देखिए 29 अगस्त से 4 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अनुभाग अधिकारी के पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2026 है। संपूर्ण विवरण और आवेदन पत्र का प्रारूप आप देख सकते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर। वेबसाइट का पता है www.trai.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and

0: presented by the News Services Division of Akashvani.
1: श्रोताओं, अब से कुछ ही क्षणों में सुनिए हमारी न्यूज मैगजीन परिक्रमा, फिर 5:10 पर मैं मिलूंगी आपसे कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में, और आज 5:30 पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विशेष लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो फार्मर्स में अवश्य जुड़िएगा। तब तक मुझे दीजिए अनुमति, प्रियांशी भटनागर का आपको नमस्कार।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बज रहे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
4: हेलो एंड नमस्कार करिश्मा। सो करिश्मा, हैव यू बीन नोटिसिंग व्हाइल कमिंग फ्रॉम फॉर ऑफिस दैट दिल्ली इज गेटिंग ब्यूटिफाइड दीज डेज। इनफैक्ट फॉर द अपकमिंग 18th ब्रिक्स समिट इन द नेशनल कैपिटल व्हिच विल बी हेल्ड ऑन द 12th एंड 13th ऑफ सितंबर दिस मंथ एट भारत मंडपम, द नेशनल कैपिटल इज गेटिंग अ मेकओवर।
3: बिल्कुल,
4: इंडिया इज होस्टिंग द इवेंट एज द चेयर ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप। दिस मीटिंग ब्रिंग्स टुगेदर लीडर्स फ्रॉम एक्सपैंडेड मेंबर कंट्रीज, पार्टनर नेशंस एंड international organizations. The Delhi government declared a holiday for government offices on September 11th to reduce traffic congestion alongside heightened security and traffic preparations across the capital. Traffic police have set up special diversions and motorcade rehearsals across major roads in the capital is going on. New Delhi is undergoing, as I said, a makeover, global standard makeover and beautification drive led by the New Delhi Municipal Council and also by the civic authorities ahead of the summit. All that's coming up in the BRICS summit and much more will be brought to you through Akashvani. So do keep tuned to 100.1 for all the updates. So shall we begin with the news headlines at this hour now, Karishma?
3: गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की।
4: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar holds bilateral meeting with Luxembourg Deputy Prime Minister Xavier Bettel, says in an era where whole world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have trusted relationship.
3: दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। MCD दक्षिणी जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित।
4: Enforcement Directorate conducts searches at 7 premises linked to TMC MP Nadimul Haq's Urdu Daily over money laundering.
3: बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज बारिश का अनुमान।
4: एंड इन टेनिस, डिफेंडिंग चैंपियंस अरीना सबालेंका एंड कार्लोस अल्काराज स्टॉर्म इनटू द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ US ओपन। And Karishma, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about International Day of Clean Air for Blue Skies. International Day of Clean Air for Blue Skies is celebrated annually on 7th of September every year to build global action and strengthen international cooperation against air pollution, as air pollution is the world's leading environmental health risk, causing millions of premature deaths every year. The day raises awareness of clean air's importance to health, productivity, the economy and the natural environment, and doing so demonstrates the connection between air quality and other environmental and developmental challenges, including climate change. This day is for sharing knowledge and practical actions used to improve air quality, practices, innovations and success stories. This day brings together diverse actors working to advance air quality management.
3: बिल्कुल, और अनुजा, जैसा कि हम जानते हैं कि साफ हवा लोगों की सेहत और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है, जबकि वायु प्रदूषण इंसानी सेहत के लिए पर्यावरण

0: से जुड़ा सबसे बड़ा खतरा है और दुनिया भर में मौत और बीमारी की एक ऐसी मुख्य वजहों में से एक है जिन्हें रोका जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अनुसार वायु प्रदूषण दुनिया में पर्यावरण से जुड़ी सबसे बड़ी जानलेवा समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के आंकड़ों से पता चलता है कि वायु प्रदूषण हर साल फेफड़ों के कैंसर, सांस के गंभीर संक्रमण और दिल की बीमारियों जैसी समस्याओं के कारण लगभग 70 लाख लोगों की समय से पहले मौत का कारण बनता है और 10 में से 9 लोग ऐसी हवा में सांस लेते हैं जिसमें प्रदूषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा वायु प्रदूषण का महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है।
1: यस करिश्मा, इनफैक्ट एयर पोल्यूशन डजंट ओनली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, इट ऑल्सो नेगेटिवली इम्पैक्ट्स द क्लाइमेट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। एयर पोल्यूशन डिक्रीजेस द ऑक्सीजन supply in our oceans, making it harder for plants to grow and as such contributes to climate change. The good news is that air pollution is largely avoidable and its negative consequences are preventable. Solutions are known and can be implemented. The world needs to act now.
0: तो नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मकसद एक ऐसा वैश्विक समुदाय बनाना है जो देशों को वायु प्रदूषण से निपटने और सभी के लिए स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करे। इसके लिए यह लोगों को एक ऐसा मंच देता है जो व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सहयोग को बढ़ावा दे सके।
1: एंड इन लाइन विद दिस ग्लोबल मूवमेंट, इंडिया celebrates Swachh Vayu Divas today, reinforcing its dedication to addressing the critical issue of air pollution. The challenges posed by rapid urbanization and industrialization demand immediate and effective action due to their severe impacts on public health and the environment. The Indian government is implementing a comprehensive range of strategies, including robust legislative measures, innovative technologies, and active community participation. Through these concerted efforts, India aims to create a healthier and more sustainable future for all.
0: और इसके साथ ही हमारे समय की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए एक साहसिक और महत्वाकांक्षी कदम उठाते हुए भारत सरकार ने 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रमुख पहल का मकसद देश के 24 राज्य के 131 शहरों में वायु प्रदूषण की व्यापक समस्या को एक रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ हल करना है। इसमें 2017-18 के आधार स्तर की तुलना में 2024-25 तक PM10 की मात्रा को 20-30% तक कम करने का स्पष्ट लक्ष्य रखा गया था। अब इस लक्ष्य को संशोधित किया गया है ताकि 2025-26 तक PM10 के स्तर में 40% तक की कमी लाई जा सके या राष्ट्रीय मानकों को हासिल किया जा सके। हालांकि शहर और राज्य प्रदूषण के बढ़ते प्रभावों से जूझ रहे हैं, इसलिए स्वच्छ और स्वस्थ शहरी वातावरण की दिशा में यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है।
1: इनफैक्ट इन न्यू दिल्ली टुडे एड्रेसिंग द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज प्रोग्राम, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैज सेड दैट क्लीन एयर इज अ फंडामेंटल नीड, नॉट एन एनवायरमेंटल लग्जरी। ही सेड दैट क्लीन एयर इज एसेंशियल फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ। He stressed the need to ensure children can play outdoors safely and the elderly can go for morning walks without health concerns. He said air pollution has no political or geographical boundaries and comes from multiple sources, including vehicles, industries and construction activities. He called for concerted efforts by all stakeholders to tackle air pollution. The Swachh Vayu Sarvekshan Awards were also presented to the best performing states, cities and wards for improving air quality under the National Clean Air Program. Meanwhile, due to efforts made under this National Clean Air Program, 95 cities out of 131 cities have shown improvement in air quality in terms of annual PM10 concentrations, and 18 cities have met national ambient air quality standards for PM10. But air pollution is certainly preventable, but we need everyone on board, from individuals to private companies to governments. The international community can come together to develop a global approach to air pollution and integrate air pollution actions with climate change mitigation.
0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विषय

0: तो बी आर इशारा अपनी साहसिक और सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्मों के लिए विशेष रूप से जानी जाती थी और उनके चर्चित फिल्मों में चेतना, मिलाप, मन जाए, घर की लाज, लोग क्या कहेंगे और वो फिर आएंगे शामिल हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म से ये डायलॉग।
1: जिस इंसान की कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, जिसके कैरेक्टर का कोई ठिकाना नहीं।
2: इंसान होना ही सबसे ऊंची जात है, सबसे बड़ा धर्म, सबसे नेक मजहब। बाकी रही कैरेक्टर की बात, चुंबक में अगर खोट हो तो लोहा उसकी तरफ खींचता नहीं। दिलों में अगर सच्चाई ना होती तो मोहब्बत में दीवानगी नहीं होती।
3: This was the voice of Amitabh Bachchan in his movie Ek Nazar. In fact, B.R. Ishara was a launch pad for many stars, and he picked up very unconventional talent and made them stars, like Parveen Babi, Amitabh Bachchan, Jaya Bhadri, and all these, and Bappi Lahiri as well.

और बढ़ते आगे, आज हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री, गायिका, निर्देशक और संगीतकार पी भानुमति को। उन्होंने मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल सिनेमा में काम किया और 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था। वर्ष 1953 में आई चंदीरानी से उन्होंने निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा और भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें तेलुगु सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में भी याद किया जाता है।

0: அரங்கிசி நிகழ்ச்சியில் சாந்தலா சுப்பிரமணியம் அவர்களின் புல்லாங்குழல் இசை கேட்டோம். பரூர் எம் கே அனந்தலட்சுமி அவர்கள் வயலின், ஆர் ஸ்ரீராம் அவர்கள் மிருதங்கம். தொடர்வது இந்தியல் செய்தி அறிக்கை, டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மேன் முகேஷ் குமார். निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की भी घोषणा की गई। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रिजयनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा और मतगणना 16 अक्टूबर को की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पदक पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ

0: देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला, वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: गोवा के तले गांव में आयोजित समारोह में श्री शाह ने 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। यह 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लग्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहलें शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया मजबूत कर रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्ययोजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है, उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा। इस बीच पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता को आज राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस दुर्घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। न्यायालय ने कहा कि इस त्रासदी के लिए केवल भवन मालिक के साथ दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विश्वविद्यालय भी जिम्मेदार है। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने सेमीफाइनल में आज सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजदा सेदान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ஆகாஷ்வாணி நேரம் 6:05.
3: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz ஆகாஷ்வாணி சென்னை FM கோல்ட்.
2: விளம்பரங்களை தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி நிரல் கேட்கலாம் நேயர்களே.
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together,

0: தொடர்வது டெல்லி ஏஞ்சல்.
1: ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் சேவா பிரபாக் கி பிரஸ்துதி விஷ்லேஷன்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே கார்யக்ரம் விஷ்லேஷன் கே நய அங்க் மே ஆப்கா ஸ்வாகத் ஹை. மே பிராச்சி பிரியா. श्रोताओं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं केवल देश की भौगोलिक सीमाएं नहीं हैं। इन सीमाओं से लगे गांव और वहां रहने वाले लोग देश की सुरक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की 7 पड़ोसी देशों के साथ 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा है। इन सीमाओं से लगे कई गाँव लंबे समय से कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, कमजोर संपर्क, सीमित सुविधाओं और रोजगार के कम अवसरों जैसी चुनौतियों का सामना करते रहे हैं। इन चुनौतियों को दूर करने और सीमावर्ती गांवों में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए वर्ष 2023 में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम यानी VVP की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य इन गांवों में सड़क, बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसी जरूरी सुविधाओं को मजबूत करना है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि वाइब्रेंट

0: ब्रिजेस प्रोग्राम के दो चरणों के जरिए सीमावर्ती गांवों को विकास की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जा रहा है और इन प्रयासों से गांवों के बीच बेहतर तालमेल और सीमा सुरक्षा को कैसे मजबूती मिल रही है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दो चरण हैं, VVP1 और VVP2। पहले चरण में उत्तरी सीमा के गांवों पर ध्यान दिया गया और दूसरे चरण में इस मॉडल को देश की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं तक ले जाया गया। दोनों चरणों का क्षेत्र अलग है, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, सीमावर्ती गांवों में जीवन को बेहतर बनाना, स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाना और सीमावर्ती समुदायों को मजबूत करना। दोनों चरण के अंतर्गत कुल मिलाकर 2616 से अधिक गांवों को शामिल किया गया है और इनका कुल वित्तीय परिव्यय 11,639 करोड़ रुपए है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि दोनों चरणों में क्या कदम उठाए गए हैं और कैसे दोनों मिलकर भारत की सीमाओं के लिए एक व्यापक विकास मॉडल तैयार कर रहे हैं।
1: पहले चरण यानी VVP1 की शुरुआत उत्तरी सीमा से हुई। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई और 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के किबिथू में इसे शुरू किया गया। VVP1 के तहत अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों में अंतर्राष्ट्रीय उत्तरी सीमा से लगे 46 ब्लॉकों के गाँवों की पहचान की गई। इनमें से 662 गाँवों को रणनीतिक प्राथमिकता के आधार पर व्यापक विकास के लिए चुना गया। इन गाँवों में लगभग 1,42,000 लोगों की आबादी है। इस चरण के लिए 4,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें से 2,500 करोड़ रुपए सड़क संपर्क के लिए रखे गए। VVP1 का उद्देश्य दूर दराज के सीमावर्ती गांवों और देश के दूसरे हिस्सों के बीच विकास के अंतर को कम करना था। इसके तहत हर मौसम में चलने वाली सड़कें, पेयजल, बिजली, मोबाइल और इंटरनेट संपर्क, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं पर काम किया जा रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल सुविधाएं पहुँचाना नहीं है, गाँव में रोजगार और आय के अवसर पैदा करना भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके लिए पर्यटन, स्थानीय संस्कृति, सामुदायिक केंद्रों और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। युवाओं और महिलाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट जैसी पहल को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। VVP2 को केंद्रीय मंडल ने 2 अप्रैल 2025 को मंजूरी दी। इसका विस्तार उत्तरी सीमा से आगे देश की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं तक किया गया। इसे फरवरी 2026 को असम के कछार जिले से नाथनपुर गांव में औपचारिक रूप से शुरू किया गया। VVP2 के लिए 6,839 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो वित्त वर्ष 2028-29 तक लागू रहेगा। इसके तहत 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 334 सीमा से लगे ब्लॉकों में 1,954 गांवों को व्यापक विकास के लिए चुना गया है। VVP1 और VVP2 के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर इनके वित्तीय ढांचे का भी है। VVP1 एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं, वहीं VVP2 एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है।
0: श्रोताओं, VVP1 की शुरुआत के लिए अरुणाचल प्रदेश के किबिथू गांव को चुना जाना भी इस योजना की सोच को दिखाता है। भारत के पूर्वी छोर पर बसे इस गांव का रणनीतिक महत्व और ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान यहां भीषण संघर्ष हुआ था। दुर्गम भौगोलिक स्थिति, कमजोर संपर्क और लंबे समय से हो रहे पलायन के कारण यहां विकास की चुनौतियां बनी रहीं। ऐसे में किबिथू से VVP की शुरुआत का संदेश साफ था, सीमावर्ती गाँव को देश के आखिरी गाँव नहीं बल्कि पहले गांव के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सीमावर्ती गांवों का विकास केवल एक योजना के जरिए करना आसान नहीं है। इन गांवों की जरूरतें अलग अलग हैं और कई विभागों की योजनाएं इनके विकास से जुड़ी हैं। इसलिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में अलग अलग सरकारी योजनाओं को एक साथ जोड़कर काम करने पर जोर दिया गया है। आइए अब जानते हैं इसका जमीन पर क्या असर दिखाई दे रहा है।
1: वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत विकास कार्यों की योजना विलेज एक्शन प्लान्स के माध्यम से बनाई जाती है। इसमें हर गांव की जरूरत को ध्यान में रखा जाता है, यानी सभी सीमावर्ती गांवों के लिए एक जैसी योजना लागू करने के बजाय गांव और क्षेत्र की जरूरत के अनुसार विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। गृह मंत्रालय इस कार्यक्रम का नोडल मंत्रालय है और राज्य सरकारों, जिला प्रशासन तथा सीमा

0: सुरक्षा बलों के साथ मिलकर योजना के क्रियान्वयन पर काम करता है। जुलाई 2026 तक गृह मंत्रालय ने वीबीपी 1 के तहत 1248 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनकी कुल लागत 3020 करोड़ 32 लाख रुपए है। इसके अलावा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने 1655 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 953 करोड़ 47 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं, जबकि 283 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में 111 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इनकी लागत लगभग 2482 करोड़ रुपए है। इन सड़कों से ऐसे 134 गांवों को सड़क संपर्क मिलने की उम्मीद है, जहां पहले सड़क नहीं थी। इसके साथ ही 35 लंबे पुलों को मंजूरी भी दी गई है। पर्यटन को भी वीवीपी के तहत रोजगार के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित किया जा रहा है। वीवीपी 1 के तहत अब तक 327 पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनकी लागत करीब 145 करोड़ रुपए है। इनमें व्यू पॉइंट, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, इको रिजॉर्ट, ट्रैकिंग मार्ग और पर्यटन केंद्र जैसी सुविधाएं शामिल हैं। लेकिन वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का असर इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं आगे जाता है। सबसे पहले बात सीमा सुरक्षा की। सीमावर्ती गांवों की सुरक्षा में भूमिका को 1999 के कारगिल संघर्ष के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। 3 मई 1999 को कारगिल क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की पहली जानकारी स्थानीय चरवाहों ने ही दी थी। यानी सीमा पर रहने वाले लोग कई बार सुरक्षा बलों के लिए आंख और कान की भूमिका निभाते हैं। दूसरा पहलू है आबादी और पलायन। बेहतर सड़क संपर्क और रोजगार के अवसर लोगों को अपने गाँव में रहने का कारण देते हैं। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग, कुमे, दिबांग वैली और शियोमी जिलों के कुछ सीमावर्ती गांवों में लोगों की अपने गांव में वापसी को इस बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। तीसरा पहलू स्थानीय अर्थव्यवस्था। पर्यटन, सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्थानीय आय के नए अवसर तैयार कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, जहां भारत तिब्बत सीमा पुलिस सीमावर्ती गांव से दूध, सब्जियां, अंडे और अनाज खरीद रही है। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: श्रोताओं, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की कोशिशें नई नहीं है। भारत में इस दिशा में करीब 4 दशक से काम किया जा रहा है। वर्ष 1986-87 में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी BADP की शुरुआत पश्चिमी सीमा से हुई थी। बाद में इसका विस्तार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी पहली आबादी से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव तक किया गया। BADP के अंतर्गत 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 111 जिलों में विकास कार्य किए गए और वर्ष 2004-05 से अब तक 39,000 से अधिक कार्यों को मंजूरी दी गई है। अब ये कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है। इसी अनुभव को आगे बढ़ाते हुए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को चुने हुए सीमावर्ती गांवों के व्यापक विकास पर केंद्रित किया गया है। इसका ध्येय सिर्फ सुविधाएं पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को अपने गांव में रहने और स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर पाने के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक हरमनप्रीत सिंह।
2: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य गोवायाः पणजी नगरे पश्चिमक्षेत्रीय परिषदः 28तमस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। तत्र गोवारक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति विशिष्ट ध्वज सम्माननं प्रदत्तवान्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः लक्जमबर्ग देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा जेवियर बेटल इत्यनेन सह उपवेशनं कृतवान्। उक्तवान् च यत् यदा सम्पूर्णं विश्वम् अनिश्चिततां प्रति चिन्तितमस्ति, तादृशे काले भारत लक्जमबर्ग देशयोः मध्ये विश्वसनीयाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रीय राजधान्याः सत्यनिकेतन क्षेत्रे भवनपतनेन मृतानां संख्या संवर्ध्य 7 यावत् उपागता। दिल्ली नगर निगमस्य दक्षिणक्षेत्रस्य उपायुक्तं समेत्य 4 अभियन्तारः

0: के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें। लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शहर या कंपनी से जुड़े सवाल इस कार्यक्रम में उसके जवाब हम नहीं दे पाएंगे। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं मार्केट विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
1: नमस्कार प्राची, नमस्कार निशित और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन।
0: आइए श्रोताओं, एक नजर डालें आज की आर्थिक सुर्खियों पर।
2: The benchmark domestic indices decline, Sensex slips nearly 400 points. Nifty settles below 23,800. The global crude oil prices rise and Prime Minister Narendra Modi to address the global FinTech Fest 2026 in Mumbai tomorrow.
0: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स लगभग 400 अंक फिसला, निफ्टी 23,800 के नीचे बंद हुआ। दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करेंगे।

0: Before we proceed, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: खबरों पर बात करेंगे, आपके सवाल के जवाब भी हमारे हमारे एक्सपर्ट देंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि दिन के अंतराल में शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया। श्रोताओं, आज प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आधा प्रतिशत फिसले। सेंसेक्स 383 अंक लुढ़ककर 76,133 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 119 अंक लुढ़ककर 23,779 पर स्थिर हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक आधा प्रतिशत गिरा, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में कोई खास बदलाव दर्ज नहीं किया गया। इससे पहले कच्चे तेल के ऊंचे दाम और पश्चिम एशिया में पुनः तनाव बढ़ने से बाजार मामूली गिरावट के साथ खुले। सत्र के दौरान दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांक दबाव में रहे, क्योंकि सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बिकवाली दर्ज की गई।
0: So benchmark domestic equity indices ended 0.5% lower today. The Sensex declined 383 points to close at 76,133, while the Nifty shed 119 points to settle at 23,779. Meanwhile, the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell 0.5%, while the small-cap 100 index ended largely unchanged. Earlier, the markets opened marginally down amid elevated crude oil prices and renewed hostilities in West Asia. Both benchmark indices remained under pressure throughout the session as a broad-based sell-off was witnessed across sectors.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इंफोसिस 3.8%, टेक महिंद्रा 2% और टाटा स्टील 1.8% नीचे आए। वहीं लार्सन एंड टूब्रो और भारती एयरटेल में आधे प्रतिशत से अधिक, मारुति में आधा प्रतिशत और पावर ग्रिड के शेयर भी लगभग आधे प्रतिशत बढ़े।
0: And in the sectoral indices, in the Bombay Stock Exchange, 23 out of 28 sectors edged downwards. Among the top underperformers, focused IT lost 2.2%, IT decreased 2.1%, and realty as well as insurance dropped 1.4%. In contrast, telecommunication rose 1.6%, healthcare added 0.7%, and hospitals gained 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,571 companies declined, 1,925 advanced, and 233 remained unchanged.
1: और अब जानेंगे रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में अपरिवर्तित रूप से 94.49 पर बंद हुआ। इसी के साथ कोलकाता से पहली कॉल हम ले रहे हैं, इनका नाम है अरिजीत। अरिजीत, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: थैंक यू एंड गुड इवनिंग टू मार्केट मुद्रा एंड शरद जी, वेरी बिग फैन।
3: गुड इवनिंग
2: सर, मेरा दो सवाल है आपसे
3: जी।
2: पहला तो ये है कि प्रोविडेंट फंड का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है अभी करेंटली और पहले,

0: और सेकंड मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरा एक प्रोविडेंट फंड और एक शेयर का एक बात है, तो वो दे आर इन द प्रोसेस, मगर जो लोग डील करे कर रहे थे वो लोग बोल रहे कि मेरा कोई हेल्थ, मेरे फैमिली में कोई जिंदा नहीं है, तो मेरा कोई नॉमिनी नहीं है, कि अगर नॉमिनी का नाम मैं नहीं डालूं तो वो गवर्नमेंट से वो पैसा रिलीज नहीं करेंगे, क्या ये सच है या झूठ?
1: देखिए अरिजीत, अगर आप पहले आपका दूसरा वाला सवाल लेते हैं, अगर नॉमिनी का नाम नहीं है तो इसमें फिर प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि आपको कोर्ट से एक सक्सेशन सर्टिफिकेट फिर लेना पड़ता है, और उस कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके उसके आधार पर फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो बेहतर तो यही है कि आप नॉमिनी रखिए, या फिर जिस डिपार्टमेंट से आप लेना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट का जो इंटरनल प्रोसीजर है उस प्रोसीजर का आपको ध्यान रखना चाहते हैं लिखना चाहिए। और दूसरा आपका पहला सवाल पीएफ का, पीएफ का इंटरेस्ट रेट तो मेरे ख्याल सभी लोग जानते हैं, आई थिंक इट इज़ अबाउट 7 point, पीपीएफ का 7.1 है, पर पीएफ का शायद ये पूछ रहे हैं, पीएफ का 8.25 के आसपास है, पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है, आप ये शायद प्रोविडेंट फंड का जानना चाहते थे, 8.25 के आसपास है। पर आप, मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप गवर्नमेंट जिस डिपार्टमेंट से आप लेना चाहते हैं वहाँ संपर्क करें, क्योंकि कई दफ़े क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पोस्थ्यूमस प्रोसेस अलग होते हैं, बाकी जो लीगल प्रोसेस है वो या तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके होता है या फिर आप नॉमिनी के थ्रू उसको ले सकते हैं।
2: राइट, टॉकिंग ऑफ द मार्केट्स टुडे शरद जी, व्हाट वी आर विटनेसिंग ओवर द पास्ट फ्यू सेशंस ऑफ कोर्स इज not surprising though, but still there is some element, some factor of concern as well. How do you visualize this? How do you perceive this?
1: Well, I think Nishit, the markets are looking right now more outwards. If markets look internally to the country, we had 7.8% GDP. We had all the four cylinders of the economy, the private consumption, government expenditure,
3: right.
1: Private investments, exports, they are all shining. But somehow I think I was talking to another platform today, and I said the market seemed to be looking more outwards, because the markets look at West Asia, crude oil prices, aggression between Iran and US, bond yields, dollar index. I think those are the factors which are sort of overshadowing our internal growth at this point of time. So I'm sure, in fact, through Market Mantra today, if I'm saying there are a lot of market operators who listen to this program, I would like to request to please start looking inwards. Look at what is happening within the country. They seem to be becoming more international, but in the process, they are looking at all the negative things which are coming out. Obviously, it does depress the sentiment, but within our country, we are doing fairly okay. So I think the day we start looking inwards, you will find the market, and market today broke a very important technical level of 23,850 on the technical charts. This becomes a matter of concern, because there could be further slide, I hope. And the crude oil prices, look at them, they were getting closer and closer to 100. The Indian basket of crude is beyond 100 now. In fact, we are heading for a time where the oil marketing companies may have to at some point of time take a call to invoke another rise in petrol and diesel prices. So those concerns are, I think, counting on the minds.
3: बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई।
2: लेट्स नॉट फॉरगेट द ब्लैक शीप इन द लॉट, मिस्टर ट्रंप एज वेल।
1: ओह यस, ही इज ऑलवेज इन द न्यूज़।
3: आगे बढ़ते हैं और अगली कॉल लेते हैं। ये है मुंबई से रत्नाकर। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: हेलो, गुड इवनिंग मैडम। मेरा सवाल है कि ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होता है
1: जी,
4: उसके बारे में रिटेल इन्वेस्टर के लिए, समझो कॉमन मैन को उसमें एंट्री करना है तो कैसे कर सकते हैं, और वो डिजिटली प्लेटफॉर्म क्या है उसका, और उसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसके बारे में थोड़े बताइए। और दूसरा मेरा सवाल है कि ये जो अभी एक न्यूज आई थी कि जीडीपी रेट अपना बढ़ने वाला है 7 point और कुछ, तो उसका कॉमन मैन के ऊपर, नहीं तो ये जो एफएमसीजी सेक्टर है, नहीं तो खुदरा बाजार है, उसमें उसका क्या परिणाम हो सकता है?
1: ओके, चलिए, दोनों सवाल रत्नाकर जी के बहुत अच्छे हैं। आज बहुत दिनों बाद इनसे बात करने का मौका मिला। फॉरेक्स ट्रेडिंग, रत्नाकर जी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि हम यहाँ निजी प्लेटफॉर्म्स का नाम तो नहीं लेते हैं, तो इसलिए मैं आपको कोई ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म तो यहाँ नहीं बता पाऊंगा, पर अगर आप ऑनलाइन जाएंगे, पर मैं आपको एक तरीके से सतर्क जरूर करना चाहता हूं कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वो भी बहुत वॉलेटाइल ट्रेडिंग होती है। आप विभिन्न करेंसीज को आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, आप अनुमान लगाते हैं कि 15 दिन बाद डॉलर बढ़ जाएगा, यूरो बढ़ जाएगा, येन बढ़ जाएगा, ब्रिटिश पाउंड बढ़ जाएगा, घट जाएगा, जो भी आप करते हैं, तो थोड़ा सा जोखिम भरा काम है, क्योंकि इसमें बहुत शार्प मूवमेंट्स

0: होते हैं और बहुत तेजी से मूवमेंट होते हैं और 24 घंटे होती है ये, तो आप तो रात को सो रहे होते हैं, मैं उम्मीद तो यही करता हूँ। तो जब आप सो रहे होंगे और रात को उस समय मान लीजिए कीमत जो आप तलाश रहे हैं वो कीमत उस समय आई, तो आप कैसे उसमें से निकल पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी। तो उसमें बहुत ही एक्टिव और 24 घंटे की मॉनिटरिंग उसमें चाहिए होती है। और दूसरा, आपने पूछा जीडीपी का 7.8% का कॉमन मैन पे, जीडीपी का देखिए रत्नाकर जी, उसका इम्पैक्ट लगभग लगभग सभी सेक्टर्स पर पड़ता है, और चाहे एफएमसीजी हो, चाहे वो स्टील सेक्टर हो, चाहे वो यू नो डिफेंस सेक्टर हो, क्योंकि जीडीपी जब बढ़ती है तो वो ओवरऑल बढ़ती है, वो ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्टर बढ़ता है, हर सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट अलग अलग किस्म का होता है। तो इसलिए संक्षेप में तो मैं यही बता सकता हूँ, बाकी आपने जो सवाल पूछा उसका बहुत विस्तृत जवाब है और बहुत लंबा डिस्कशन मांगता है। मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे कि दो लोग और क्यों में हैं, तो
1: बिल्कुल शरद जी, क्योंकि समय की परिधि है और भी कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं। तो दिल्ली से प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: हेलो
1: जी,
0: जी प्रकाश जी बताइए।
2: हाँ जी, मार्केट मंत्र टीम पे नमस्कार।
0: नमस्कार
2: सर जी, को भी नमस्कार सर।
0: बिल्कुल नमस्कार
2: सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है
0: जी,
2: कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है
0: जी,
2: क्या वो नेग्लिजिबल भी हो
0: जी,
2: तो भी क्या उसके लिए ITR 2 भरना पड़ता है? क्योंकि अगर कोई मैं SIP कर रहा हूँ
0: तो
2: जो जो इंस्टॉलमेंट एक साल के कम अवधि की है वो मैं रिडीम कर देता हूँ, तो वो क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जरूरी है कि ITR 2 भरा जाए?
0: नियम तो यही है प्रकाश जी के, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको ITR 2 भरना चाहिए। सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो और एक मकान हो और 50 लाख से कम आए हो तो आप जो सरल फॉर्म है फॉर्म 1, बाकी नियम तो यही है। पर प्रकाश जी, आपके मुझे लग रहा है आपका कंसर्न शायद इसलिए है, और मैं प्राची और निशित को भी बताऊं, क्योंकि ITR 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, पर आपको सच बताऊं तो तभी तक कॉम्प्लिकेटेड है जब तक आपने उसको खोल के नहीं देखा। बहुत बहुत प्रोग्राम्ड है, हर चीज़ का नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आगे क्या करना है ये लिखा हुआ है, उसको इतना सिस्टमैटिक बना दिया गया है। तो प्रकाश जी घबराइए नहीं, आप ITR 2 भरिए और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई परेशानी आती है तो आप अगले कार्यक्रम में हमसे दोबारा यहाँ मार्केट मंत्रा में जुड़ के कभी भी पूछ सकते हैं।
1: जरूर, दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, अपना सवाल।
3: हाँ नमस्कार सभी को, कोहली सर से मेरा प्रश्न सर ये है सर
0: जी,
3: कि 2025 फर्स्ट क्वार्टर में हमारी GDP 6.9% थी सर
0: जी,
3: और 2026-27 में अभी हम पहले तिमाही में 7.8 पे आ गए हैं
0: जी।
3: तो मैं सर यही आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसे कौन से की फैक्टर, कौन से मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, या फिर IIT का डेटा बढ़ा है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर इतने तेजी से बढ़े हैं ताकि हम 6.9 से 7.8 आए? हालांकि अच्छी चीज है, गुड है। और सर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़ा सवाल है सर
0: जी।
3: तो मेरा शंका ये है सर कि जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बड़ी अच्छी चीज है कि कर मुक्त मतलब टैक्स फ्री हमारा सामान दूसरे देश में, दूसरे सामान का देश हमारे देश में आ जाएंगे, हमारी पहुंच बढ़ेगी, लेकिन सर मुझे ये भी डर लगता है कि हम जिन देशों से आयात निर्यात कर रहे थे तो इससे ट्रेड बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं है? जैसे मान लो हम 100 रुपए की चीज एक्सपोर्ट करते हैं सर, तो हम टैक्स रेवेन्यू हमारे 20% के हिसाब से 20 रुपए बनता है मान लीजिए, और हम उनसे आयात करते हैं 50 रुपया का, तो उनको हम 20% अगर हम टैक्स देते हैं 10 रुपए का टैक्स देते हैं, ओवरऑल में हमें 10 रुपया नेट प्रॉफिट में आता है, तो ये ट्रेड बैलेंस गड़बड़ तो नहीं हो सकता सर? धन्यवाद सर।
0: चलिए, इनका पहला सवाल जीडीपी से संबंधित है, अभी पिछले श्रोता में भी शायद उन्होंने रत्नाकर जी थे, उन्होंने ये पूछा था। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं जब अमित देखा जाता है इसमें, हमारा जो जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी बढ़ा है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने फायर किया है वो सिलेंडर भी बढ़ा है, हमारा सर्विसेज सेक्टर भी बढ़ा है, सबकी परसेंटेजेस हैं जो बढ़ा है। उसके अलावा 4 सिलेंडर्स की मैंने बात करी थी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट केपेक्स, कंजम्पशन हमारी बढ़ी है, उसके अलावा एक्सपोर्ट्स भी हमारे 10% बढ़े हैं। तो चारों इंजन्स ने फायर किया। और मैं यहाँ पर प्राची और निशित की इजाजत से ये भी बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग इसको आलोचनात्मक दृष्टि से देख रहे थे कि 7.8 बढ़ी है तो फील गुड फैक्टर नहीं है। तो आप अर्थव्यवस्था जब बढ़ती है तो उनके नंबर्स को हमें देखना चाहिए, और भारत जैसी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में हर व्यक्ति ये उम्मीद रखता है कि 7.8% मेरी जेब में आया कि नहीं आया, जबकि ऐसे नहीं होता। ये अभी एक क्वार्टर की है, कालांतर में जब लगातार तेज बढ़ती है तो पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति को भी इसका लाभ मिलता है। इनका दूसरा सवाल FTA से था, कोई ट्रेड बैलेंस नहीं बिगड़ेगा हमारा अमित, इससे तो उल्टा सुधरेगा, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट तो हमारा कम होता है क्योंकि अब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट तो हमें जितना जरूरत है उतना करेंगे, पर हमारा सामान यहां से $860 बिलियन का हम साल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है

0: उसकी उसकी गिनती बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी और भारतीय एमएसएमईज के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज निकलेगी। आप डर दिमाग से निकाल दीजिए, हमें तो आपके मन में, आपने कहा कोई डर है, कोई डर नहीं है, तो प्रशंसा की बात है, तारीफ की बात है, खुश होने की बात है।
1: दिल्ली से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, इनका नाम है वत्सराज। महोदय कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार, नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम।
1: नमस्कार
2: शरद कोहली जी को प्रणाम।
0: प्रणाम।
2: सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा शरद कोहली जी को, क्योंकि जितनी सरल भाषा में ये सारी चीज हमें बताते हैं वो बिल्कुल खाने में बैठ जाती है।
0: धन्यवाद। सवाल पूछिए।
2: मैं सर आपकी एक सहमति चाहता हूँ, पिछले आपके सेशन में एक क्वेश्चन आया था
0: जी।
2: और उसका आपने आंसर किया था, एक क्वेश्चन था कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक LTCG या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आदमी को अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है
0: जी।
2: तो मैं सहमति

0: लेना चाहिए आदमी को अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है
1: जी।
0: तो मैं सहमति ये चाहता हूँ कि मिनिमम क्या इतना बुक कर लेना चाहिए जितना गवर्नमेंट हमें रिबेट देती है, 1 लाख या 1.25 लाख के करीब जो रिबेट देती है उतना तो मिनिमम बुक कर लेना चाहिए। क्या मैं इस मामले में सही हूँ?
1: वत्सराज जी, ये इसको हम टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं जो आप कह रहे हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो 1,25,000 का इक्विटी पे हमको छूट मिलती है, पहले सेक्शन 112A उसको कहते थे, जो पुराने एक्ट में भी लोगों के मुंह पे वही चढ़ा हुआ है, तो मैं नए सेक्शंस अभी नहीं बोल रहा हूँ। तो कर लेना चाहिए, पर इसमें खाली टैक्स वत्सराज जी एक कंसिडरेशन नहीं है। मैंने जो बताया था, क्योंकि मार्केट जिस प्रकार से इस समय बिहेव कर रहा है, हो सकता है कोई वेस्ट एशिया से अभी जो खबरें आ रही हैं शायद और मामला बिगड़ जाए, क्रूड ऑयल की कीमतें 100 के आसपास जा रही हैं, तो टैक्स तो एक मैटर होता है। और मैं समझता हूँ आप जो बात कह रहे हैं वो सामान्य परिस्थिति में होता है कि आपने टैक्स हार्वेस्टिंग कर ली, कि आपने बुक कर लिया और फिर उसको री इन्वेस्ट कर दिया। पर इस समय अगर प्रॉफिट अच्छा है, ये बहुत सब्जेक्टिव सवाल है वत्सराज जी आपका, अगर कितना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगा, अलग होगा। पर मैं ये मानता हूँ प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। मुझे लग रहा है अगर ऐसे वक्त में मुनाफा है तो बुक करके चलना चाहिए। इस समय 1,25,000 टैक्स को आप सेकेंडरी कंसिडरेशन रखिए और प्रॉफिट को आप मुख्य रखिए। मुख्य और गौण कहते हैं अगर हिंदी में, मेरी हिंदी अगर मैं ठीक मुझे बता रही है, तो मुख्य रखिए आप प्रॉफिट को, टैक्स को गौण रखिए, पर 1,25,000 अगर हो रहा है तो अच्छी बात है।
2: आइए जानते हैं क्या है अगला सवाल। नोएडा से हमारे साथ विनय कुमार जुड़ रहे हैं। विनय जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे मार्केट मंत्र टीम का अभिनंदन करता हूँ।
1: धन्यवाद।
3: शरद कोहली साहब का मैं भी एक फैन हूँ।
1: माय प्लेजर सर।
3: मेरा प्रश्न आज ये है कि अभी पूरी शेयर मार्केट में काफी अनिश्चितता है और आज काफी बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल भी 23,850 का टूट गया है।
1: बिल्कुल।
3: तो इस समय में रिटेल इन्वेस्टर की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए सर?
1: बहुत अच्छा सवाल है विनय। देखिए, मार्केट के बारे में मेरा नज़रिया अभी तक जो रहता था, प्राची निशित जानते हैं, मैं हमेशा ये कहता था कि मार्केट में आप लंबे वक्त के लिए बने रहिए, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए। थोड़ा सा ये जो हाल में डेवलपमेंट्स हुए, इसमें मेरे नज़रिए में मैंने समय अनुसार बदलाव किया है और मैं आज इनकी इजाज़त से वो बदलाव बताना चाहूँगा। बदलाव ये है कि मुझे यहाँ से मार्केट के लिए थोड़ा सा आगे वाले कुछ समय टफ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो भू राजनीतिक परिस्थितियाँ बन रही हैं, जियो पोलिटिकल जिसको कहते हैं, और भू आर्थिक परिस्थितियां जो बन रही हैं जिसको जियो इकोनॉमिक कहते हैं, वो परिस्थितियां बहुत अनुकूल मुझे यहां से नहीं नजर आ रही हैं। रशिया नेटो में टेंशन है, ईरान इसराइल कभी खत्म ही नहीं होने में आ रहा है, 6 महीने से ऊपर हो गए, 4.5 साल रशिया यूक्रेन को हो गए। तो मुझे लग रहा है विनय, यहां पर रिटेल निवेशकों को जो बहुत अच्छे वैल्यूएटेड शेयर्स हैं, जहां एक्स्ट्रॉर्डनरी वैल्यूएशन हैं, उसमें तो आप उसको लेके रख सकते हैं। पर ज्यादातर कभी कभी क्या होता है, मैं हालांकि ये कहने में थोड़ा संकोच कर रहा हूं, कभी कभी ना इन्वेस्ट करना भी विनय एक स्ट्रैटेजी होती है। निवेश करना तो स्ट्रैटेजी होती है, पर कभी कभी दूर बैठ के और तमाशा देखना भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप दूर बैठ के ऑब्जर्व करिए। तमाशा शब्द मैं एक हल्के अंदाज में, मतलब आप उसको ऑब्जर्व करिए, थोड़ा सा मार्केट का फैब्रिक जब सुधरेगा विनय, तब आप उसमें एंटर करिएगा, क्योंकि अभी हमें मार्केट का यहाँ से बॉटम नहीं मालूम है। और ये जो मैंने बात करी, ये सभी श्रोताओं के लिए है। अब कोई कहेगा कि कोहली साहब तो पहले कहते थे कि भाई आप लंबे वक्त के लिए बने रहिए, 5 साल 10 साल बने रहिए, पर अब परिस्थितियाँ जिस हिसाब से बदलती हैं आपको उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। मैं तो निवेश के लिए बात कहता हूँ कि आपको हर 3 महीने में अब रिव्यू करने का वक्त आ गया है। तो इसलिए विनय, मैं उम्मीद करता हूँ आपको संदेश मिल गया होगा और आप उसके अनुसार अपना निर्णय ले सकते हैं। हालांकि निवेश की सलाह आपको अपने फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लेने चाहिए, और जो शुरू में डिस्क्लेमर और आखिर में डिस्क्लेमर पढ़ा जाता है उस पे भी ध्यान रखना चाहिए।
2: बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। श्रोताओं, एशिया के शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4.5% से अधिक बढ़ा, जबकि जापान के निके सूचकांक में 2% से अधिक वृद्धि हुई। यूरोप के शेयर बाजार में जर्मनी का डैक्स लगभग 0.5% नीचे कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक लंदन का फुटसी 0.1% ऊपर कारोबार करता नजर आया। इस बीच लेबर डे के उपलक्ष्य में आज रात अमरीकी शेयर बाजार बंद रहेंगे।
4: शरद जी, हाउ डू वी सी दिस एशियन मार्केट्स ऑलमोस्ट काइंड ऑफ बीइंग इंसुलेटेड टुडे व्हेन कंपेयर टू द यूरोपियन मार्केट? Kospi 4.6, Japan Nikkei 2.1% up.
1: Well, we were very keenly observing Kospi since morning, and we found Hynix and Samsung, they were doing great. So I think there was excitement which was technology driven, and in the Nikkei we observed SoftBank taking the lead. So I think there were 2-3 companies. It was AI driven, it was tech driven, it was chip demand, semiconductor demand, which

0: drove these markets contrary to the global sentiment. Also, we should not forget, I think the American markets are closed today because of the Labor Day.
1: Right.
0: So they had their day where they could think independently without taking cues. I was joking at my office, you know, with our stock market team that today, you know, the cat is away and the mouse will play. You know, no cues from America, so you just do whatever you want to for a change. Otherwise, the markets normally follow. Aur main to mazak mein kai baar kehta hu ki aisa lag raha hai ki Karwa Chauth hota hai na hamare, to uska chand nikalta hai to ark dekh ke pani piya jata hai. ऐसा लगता है हमारी मार्केट सुबह चांद निकलने की इंतजार, अमेरिकन मार्केट कब खुले तो हम पानी पिए, इस तरीके का माहौल मुझे दिखाई दे रहा. तो आज तो कोई दिक्कत नहीं थी.
2: बेहतरीन आपने उपमा दिया है. और गाजियाबाद से हमारे साथ इसी के साथ मनीष जुड़ रहे हैं. मनीष जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम, और कोहली जी को भी बहुत बहुत नमस्कार.
0: नमस्कार मनीष.
3: सर, अभी आपको सुन रहा था, आपने एक बड़ी अच्छी सी बात बताई, बता रहे थे कि कभी कभी ना नहीं इन्वेस्ट करना, बेचना भी एक स्ट्रेटेजी होती है. तो आई थिंक ये रिटेल के लिए आपने रिटेल इन्वेस्टर को माइंड में रख के बोला होगा. लेकिन उनके लिए जो एक SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड पे रेगुलर कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उनके लिए भी ये स्ट्रेटेजी क्या अप्लीकेबल होगी? दे शुड स्टॉप SIPs और वॉच, और दे शुड कंटिन्यू एज दे आर डूइंग. मतलब बेसिकली अ गुड अमाउंट ऑफ आर सेविंग्स आर गोइंग इन एज ए SIP. तो अभी का जो एज ए मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली की तरफ से तो जा रहा है, बिकॉज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो FIAs जिस तरह से वो पैसे निकाल रहे हैं आ रहे हैं, बट जो लोकल जो है उनकी तो SIP ठीक ठाक आ रही है. तो एज ए मिडिल क्लास मैं समझना चाहूँ क्या स्ट्रेटजी उनकी भी है या दे शुड.
0: जी जी जी, देखिये मनीष, अगर तो आपकी SIP जो आपने म्यूचुअल फंड में किया हुआ है, अगर वो NAV अच्छा मुनाफा आपको मिल रहा है, तो फिर मैंने जो अभी पहले बोला था वो आप उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और कुछ समय के लिए अगर आप रोक भी देंगे तो कोई मुझे इतना इसमें खराबी नहीं दिखाई देती है. पर अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है, NAV आपकी इस टाइम बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं. पर प्रॉफिट हो रहा है, मेन बात जो मैं कहना चाहता था प्राची और निशित, कि प्रॉफिट हो रहा है तो इस समय थोड़ा सा बुक कर लीजिए. और अगर आपकी NAV, अब ये मनीष मुझे नहीं पता आप कौन से फंड में हैं, कितनी NAV है, तो ये थोड़ा सा आप इसमें स्पेसिफिक में जाना पड़ेगा. आपकी बात का बहुत सटीक उत्तर तो तब दिया जा सकता है, पर अब तक मैंने बोला है, आप सुन रहे थे, मैंने आपकी बातों से लगा, उसमें से आप अंदाज निकाल सकते हैं.
2: मथुरा से हमारे साथ कुंज बिहारी जुड़ रहे हैं. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: धन्यवाद. ये पूछना चाहूंगा कि ये अपना गोल्ड कौन सा समय ठीक महसूस करें, जैसे आपका उतार चढ़ाव चल रहा है, और दूसरा सवाल शेयर मार्केट के अलावा और कोई अच्छी जगह है जहां हम सेफ अपना इन्वेस्ट करें? और तीसरी एक छोटी सी बात अपने कोहली सर से है, ये पूछना है इनसे कि अगर ईरान अमेरिका का युद्ध खत्म हो जाता है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध खत्म हो जाता है, इसमें इन दोनों चारों पार्टियों को किसको क्या बेनिफिट मिलेगा इतना बर्बादी होने के बाद?
0: चलिए, गोल्ड का आपने कहा, गोल्ड का तो मुझे भविष्य उज्जवल नज़र आता है, क्योंकि आपने तीन पूछे हैं तो मुझे छोटे छोटे जवाब देने पड़ेंगे. मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में गोल्ड बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है, शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रहेंगे. शेयर मार्केट के अलावा आपने पूछा और कहाँ, तो ऐसे समय में जब निवेश करना हो तो आप जो फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो सॉवरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, RBI के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, बैंक की फिक्स डिपॉजिट्स हैं, तब तक के लिए निवेशक एक तरह से रिसेस ले सकते हैं. रिसेस होती थी ना जब स्कूल में हम छुट्टी हो जाती थी, कुछ टाइम के लिए पढ़ाई बंद हो जाती थी, तो आप एक रिसेस के तौर पे इन पे ले सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर आगे बढ़ रहा है. दूसरा, इन्होंने पूछा जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो आपके मुंह में पहले तो घी शक्कर, अगर ये युद्ध खत्म हो जाता है, और फिर क्या आपस में ये गले मिल लेंगे? अब तो मैं यही कहूंगा कि अगर खत्म हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर कुंज बिहारी जी, मुझे यहां से कुछ बहुत ज्यादा अभी खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे. काश आपकी बात सत्य हो, आप पहले बहुत दिनों बाद मुझे कोई ऐसे व्यक्ति मिले जो कह रहे थे कि ये लोग आपस में गले मिल जाएंगे, पर अभी मुझे कोई ऐसा आसार तो नहीं नजर आ रहे. निश्चित और प्राची, मेरे ख्याल
2: में कहने का तात्पर्य ये था कि अगर इस तरीके की जो युद्ध चल रहे हैं वो अगर सेटल हो जाते हैं तो किसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये किस चीज, ये कौन से नाक की लड़ाई,
0: क्या खोया क्या पाया बाद में? देखिए, मुझे लगता है युद्ध में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, केवल मानवता हारती है, नुकसान जानमाल का नुकसान होता है. तो एक लाइन में जवाब दूं तो यही है.
1: Right, and on to some other stories. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate and address the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai tomorrow evening. The theme of GFF 2026, one of the world's largest and most influential annual fintech conferences, is potential to impact agentic AI, tokenization, quantum, trusted, connected global systems for inclusive finance. According to an official press release, GFF 2026 seeks to build on India's leadership in digital payments and financial inclusion and move from potential to impact. The discussions will focus on how AI

0: AI, programmable finance, quantum technologies, and other critical and emerging technologies can create trusted, inclusive, and measurable outcomes for citizens, enterprises, and economies globally. Since 2020, Global FinTech Fest has emerged as a leadership platform bringing together policymakers, regulators, central banks, financial institutions, fintechs, technology companies, investors, academia, and other global stakeholders to discuss and shape the future of finance. The 7th edition will run till 11th of September 2026 in Mumbai.
1: Delhi se Deepak hamare saath jud rahe hain. Deepak ji, sanshipt mein apna sawal poochiye please.
2: Namaskar ma'am.
1: Ji.
2: Mera kuch nahi tha, jaise market down hoti hai to liquid fund ke jo interest hai wo bhi down hota hai ya wo same chalta rehta hai?
3: दीपक, लिक्विड फंड्स के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, जो उस पर रिटर्न होता है, वो वेरी करता रहता है. वो डिपेंड करता है कि डिमांड और सप्लाई पे, कि कितने लोग लिक्विड फंड्स में, जो श्रोता नहीं जानते उनके लिए जल्दी से मैं बता दूं, लिक्विड फंड्स होते हैं जो 2-3 दिन के लिए आप पैसा रखते हैं, उसमें आपको अमूमन मैंने देखा है करीब 6-7% डिपेंडिंग ऑन डिमांड सप्लाई इतना रिटर्न आता है. तो वो ऊपर नीचे होता रहता है दीपक उसमें, पर वो रिलेटिवली सेफ माने जाते हैं. और बहुत ही छोटे टर्म के लिए जब किसी को पैसा रखना हो, तो बजाय इसके कि सेविंग्स में पड़ा है, तो बहुत लोग इसमें इसको खेल को करते हैं और बड़ा बड़ा कामयाब तरीके से करते हैं.
0: Moving on to crude, the global crude oil prices climbed to near 6-week high as renewed strikes over the weekend in the Strait of Hormuz heightened concerns over supply disruptions. Brent crude was trading 1.1% up at $97.37 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading 0.8% up at $92.20 per barrel when reports last came in.
1: भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत आज लगभग 1.5% फिसलकर 1,52,703 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई. वहीं चांदी की कीमत 1.5% से अधिक बढ़कर 2,31,650 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई. शरद जी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद. तमाम श्रोताओं के तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
3: धन्यवाद. थैंक यू सो मच.
0: Thank you so very much, Sharad ji. And before we close, a reminder of the headlines once again. The benchmark domestic indices decline. Sensex slips nearly 400 points. Nifty settles below 23,800. The global crude oil prices rise. And Prime Minister Narendra Modi to address the Global FinTech Fest 2026 in Mumbai tomorrow. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीटों और पुद्दुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुद्दुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यवसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: समारोह गोवा के तलेगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। श्री शाह ने 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। यह 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद ने

0: सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंधन निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लक्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया है कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहले शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को मजबूत कर रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैकटेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्य योजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण यह दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने सेमीफाइनल में आज सरिता को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Defence Acquisition Council today cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the Defence Forces. The approval was granted during a meeting of the Council held under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh. The proposals include procurement of chemical, biological, radiological and nuclear recce vehicles, advanced light helicopters and Sarvatra bridge system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudra radars, design and development and subsequent procurement of marine gas turbines. Meanwhile, for the Indian Air Force, approval was granted to various proposals to enhance the war fighting capability of fighters, transports and helicopters. The Defence Ministry said that 98% of total procurements will be made from the Indian industry. Union Home Minister Amit Shah today presented the prestigious President's Police Colour to the Goa Police at a ceremony held at Dr. Shyama Prasad Mukherjee Indoor Stadium in Talegaon in Goa. Mr. Shah also launched an AI-based voice assistant for the 1930 Cyber Fraud Helpline, supporting 12 languages to provide quick assistance to citizens and tourists. Addressing the gathering, Mr. Shah praised the Goa Police for its service, professionalism, courage and discipline. He said the force has played an important role in maintaining internal security, protecting the coastline and safeguarding Goa's tourism and economy.
2: With 8 decades of glorious service, the Goa Police now proudly joins the distinguished ranks of police forces across the country that have been honored with the President's Colour. This prestigious recognition is a testament to the Goa Police's glorious history,

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மேன் முகேஷ் குமார். रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजीगत रक्षा खरीद संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में परिषद की बैठक में दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: गोवा के तले गांव में श्री शाह ने 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। ये सेवा 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लग्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना

0: चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक ही सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्य योजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की भी घोषणा की गई। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रिजनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने के 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण यह दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया है कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों के परिजनों से पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए डीएनए नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि जो परिवार डीएनए संबंधी जानकारी देना चाहते हैं वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। दूतावास इस जानकारी को संबंधित चीनी अधिकारियों को भेजेगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सिदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुई तिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय RS रघु। The Defence Acquisition Council today cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the Defence Forces. The approval was granted during a meeting of the Council held under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh. The proposals include procurement of chemical, biological, radiological and nuclear recce vehicles, advanced light helicopters and Sarvatra bridge system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudhra radars, design and development, and subsequent procurement of marine gas turbines. Meanwhile, for the Indian Air Force, approval was granted to various proposals to enhance the war-fighting capability of fighters, transports, and helicopters. The Defence Ministry said that 98% of total procurements will be made from the Indian industry. Union Home Minister Amit Shah today presented the prestigious President's Police Colour to the Goa Police at a ceremony held at Dr. Shyama Prasad Mukherjee Indoor Stadium in Talegaon in Goa. Mr. Shah also launched an AI-based voice assistant for the 1930 Cyber Fraud Helpline, supporting 12 languages to provide quick assistance to citizens and tourists. Addressing the gathering, Mr. Shah praised the Goa police for its service, professionalism, courage and discipline. He said the force has played an important role in maintaining internal security, protecting the coastline and safeguarding Goa's tourism and economy.
2: With 8 decades of glorious service, the Goa police now proudly joins the distinguished ranks of police forces across the country that have been honored with the President's colour. This prestigious recognition is a testament to the Goa police's glorious history, professional excellence, courage, discipline, and unwavering dedication to duty. It is in recognition of these exemplary qualities and its outstanding service to the nation that the Honorable President has conferred the President's colour upon the Goa police.
3: गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது இந்திய அரசின் வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நல அமைச்சகம் வழங்கிய ஹலோ ஃபார்மர் நிகழ்ச்சி.
1: ஆஹா, இந்த மழையாலையும் பயிர் பாதிச்சிருச்சே, இப்ப என்ன செய்யறது?
2: கவலைப்படாத நண்பா, பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்துல சேர்ந்திருக்கியா?
1: ஆமா, சேர்ந்திருக்கேன். PMFBY பாலிசி மூலமா இழப்புக்கு நிதி கிடைக்கும்னு நம்பிக்கையா இருக்கேன்.
3: இயற்கை பேரிடர், எதிர்பாராத வானிலை மாற்றம் போன்ற காரணங்களால் ஏற்படும் பயிர் இழப்பிலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டம்.
2: தகுதியுள்ள விவசாயிகள் உதவி எண் 1444 தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அல்லது PMFBY அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை பார்வையிடலாம். அருகில் உள்ள வேளாண்மை துறை அலுவலகம் அல்லது பொதுச் சேவை மையத்தையும் அணுகலாம்.
4: வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நல அமைச்சகம், இந்திய அரசு.
1: சார், விதை வாங்க பணம் தேவை, என்ன செய்யறது?
2: பிரதம மந்திரியின் கிசான் கிரெடிட் கார்டு வாங்குங்க, குறைஞ்ச வட்டியில தேவையான விவசாய கடன் கிடைக்கும்.
1: அப்படியா? இது ரொம்ப உதவியா இருக்குமே.
2: விவசாய செலவுகளுக்கு எளிய கடன் வசதி தருவது நம்ம பிரதம மந்திரியின் கிசான் கிரெடிட் கார்டு. அருகில் உள்ள தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கியையோ அல்லது கூட்டுறவு வங்கி கிளைகளையோ தொடர்பு கொண்டு விண்ணப்பிக்கலாம். உங்களை மாதிரி விவசாயிகளோட வளர்ச்சிக்கு கிசான் கிரெடிட் கார்டு உறுதுணையா இருக்கும்.
4: வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நல அமைச்சகம், இந்திய அரசு.
0: இந்நிகழ்ச்சியின் விளம்பரதாரர் இந்திய அரசின் வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நல அமைச்சகம்.
5: நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்ய வேண்டிய ஒரு நேரம் வந்துருச்சு. ஹலோ ஃபார்மர்ஸ் நிகழ்ச்சியை இன்னைக்கு நாம நிறைவு செஞ்சுட்டு அடுத்த வாரம் மறுபடியும் சந்திப்போம். இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து இப்போது விடைபெறுவோர்
0: புவனேஸ்வரி,
5: பி சரவணன். மீண்டும் சந்திப்போம். 8:45 ஆயிடுச்சு. அடுத்த வாரம். நன்றி,
6: நமஸ்கார். आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार. रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा. नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित. दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए. निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की. तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव. और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची. भारत का पदक पक्का. रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई.
7: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई. नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई. इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है. रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद

0: भारतीय उद्योग से की जाएगी CBRN टो ही वाहन क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और उन्हें चिन्हित करने में सक्षम होंगे। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में

0: ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
1: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें अब केवल विवादों के समाधान का मंच नहीं रह गई हैं, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
3: गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज समारोह में श्री शाह ने गोवा पुलिस की सेवा और साहस की सराहना की। उन्होंने 1930 हेल्पलाइन के लिए AI आधारित वॉयस असिस्टेंट शुरू किया। श्री शाह ने 112 हेल्पलाइन पर कम हुए प्रतिक्रिया समय का उल्लेख किया और गोवा पुलिस से 2029 तक नशीले पदार्थों की समस्या खत्म करने में नेतृत्व करने का आह्वान किया। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस LPG रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू LPG उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में LPG आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही।
7: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो। न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले, बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें। सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें।

0: निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने के 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थी या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी पीजी और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी पीजी आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसरो के निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया है। बेंगलुरु में आज उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
5: इसरो इज नॉट प्राइवेट।
6: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और NCS के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है, बजट की कोई कमी नहीं है।
5: देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ बजट।
0: चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों के परिजनों से पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए DNA नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि जो परिवार DNA संबंधी जानकारी देना चाहते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। दूतावास इस जानकारी को संबंधित चीनी अधिकारियों को भेजेगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सिदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय। आज रात 9:30 बजे

इस फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज़। और आज का हमारा विषय है लोक अदालत यानी जनता की अदालत। हम सब जानते हैं कि हमारी सामान्य अदालतों में एक छोटे से केस को भी सुलझने में कई साल लग जाते हैं। सभी लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो महंगा वकील कर सके, तारीख पर तारीख मिलती रहती है। तो इसी समस्या को खत्म करने के लिए हमारे संविधान ने हमें लोक अदालत का तोहफा दिया और आज पूरे आधे घंटे हम इसी विषय पर बात करेंगे कि लोक अदालत क्या है, कैसे ये काम करती है, इसकी प्रक्रिया क्या है और आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है। और आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, हमारे आज के मेहमान हैं एडवोकेट आशीष कुमार पांडे जी को, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। नमस्कार आशीष जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन ऑल इंडिया रेडियो, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर।
0: जी श्रोताओं, और आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप हमारे नंबर पर कॉल करना शुरू कीजिए। नंबर है 0112311 0411 0112317117 0112317116 और 0112334444 पर आप कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रश्न #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं आशीष जी, लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोक अदालत क्या है और ये कैसे काम करती है।
1: देखिए, भारत का जो संविधान है वो एक्सेस टू जस्टिस की बात करता है, वो सबके लिए न्याय की उपलब्धता होनी चाहिए, वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। और इसी तरीके से संविधान में त्वरित न्याय की भी बात करी गई है। अब इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को जब हम एक वास्तविकता के साथ सामने रखते हैं कि भारत की न्याय प्रणाली में आप पाएंगे कि मामले बहुत समय तक लंबित हो जाते हैं, लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रेन होता है, लोगों को कई बार आप पाते हैं कि प्रॉपर लीगल एडवाइस नहीं मिल पाती है, और सालों साल, जैसे कि एक पॉपुलर डायलॉग है कि तारीख पर तारीख मिलती रहती है। और बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए हैं सरकारों की तरफ से कि किस तरीके से हम उन कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ को प्रैक्टिकली ज़मीन पर उतार पाएँ। अब इन्हीं प्रयासों में एक प्रयास रहा है, हमने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 87 में लाए, उसके तहत मल्टी टीयर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। नेशनल लेवल पर आपकी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, इसी तरीके से स्टेट लेवल पर होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। अब ये अथॉरिटी

0: समय समय पर उन फोरम्स को कॉन्स्टिट्यूट करती रहती हैं जिन फोरम्स में कोर्ट में चल रहे केसेस या जो केसेस कोर्ट में ले जाए जाने वाले हैं उन केसेस को रेफर कर सकते हैं
1: जी।
0: ये फोरम्स आपस में दोनों पार्टीज को बिठाकर एक तरीके से कॉन्सिलिएशन का काम करती हैं और आपस में ही एक सुलह समझौते के आधार पर अपना अवार्ड पास करती हैं। तो एक तरीके से जिसको हम ADR सिस्टम कहते हैं एक वैकल्पिक न्याय व्यवस्था है, इसकी तरफ प्रयास किया गया है लोक अदालतों के द्वारा। जी
1: जी। और अब हमारे श्रोताओं के प्रश्नों की भी शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा हिसार से हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी।
2: हाँ जी, नमस्कार जी, और वकील साहब को भी नमस्कार जी।
0: नमस्कार राजेंद्र जी।
2: मैं ये जानना चाहता हूँ वकील साहब से कि लोक अदालत में कौन से केसों की सुनवाई होती है और दूसरा और कौन से केस की नहीं होती। आम आदमी कैसे पता करे कि कहाँ लोक अदालत लगती है और इसके बारे में कब कब सूचना दी जाती है, इसके बारे में जानना था। नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार। देखिए मैं आपके आखिरी क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ, कब कब लोक अदालतें लगती हैं और कहाँ कहाँ लोक अदालतें लगती हैं। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक एनुअल कैलेंडर जारी करती है जिसमें कि कब कब लोक अदालतें लगनी हैं उसके बारे में एक डिटेल्ड कैलेंडर होता है। अब दूसरा प्रश्न आपका है ये कहाँ लगती हैं। न्याय के सर्वोच्च स्तर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी, तालुका स्तर पर, मंडल स्तर पर, हर जगह इन लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है और वो लोक अदालतें सामान्यतः जो राष्ट्रीय कैलेंडर बना होता है उसके अनुसार काम करती हैं और कभी कभी स्पेशल लोक अदालत भी लगती हैं। फिर आपने सवाल पूछा कि किस तरीके के केसेस इसमें डील किए जा सकते हैं और किस तरीके के नहीं डील किए जा सकते हैं। देखिए जो भी सिविल केसेस होते हैं ऑलमोस्ट सारे केसेस लोक अदालतों में रेफर किए जा सकते हैं, वहाँ पर ले जाए जा सकते हैं। और वो क्रिमिनल केसेस जो कंपाउंडेबल होते हैं जैसे आपका चेक बाउंस का केस हो गया या ऐसे कंपाउंडेबल केसेस जिसके लिए लॉ में प्रोविज़न है, वो सारे केसेस लोक अदालतों में लाए जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर कोई हीनस क्राइम हुआ है, जैसे अगर कोई रेप का केस हुआ है, एक मर्डर हुआ है, इस तरीके के केसेस में चूंकि स्टेट भी अपने आप में एक पार्टी होती है, ये क्राइम्स न केवल विक्टिम के अगेंस्ट क्राइम्स होते हैं बल्कि समाज के खिलाफ भी एक क्राइम होता है, इस तरीके के केसेस को लोक अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। जो आपके पारिवारिक झगड़े होते हैं, जो आपके समाज में छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, या एक बहुत बड़ी यूटिलिटी निकल कर आई है लोक अदालतों की, आपका गाड़ियों का चालान हो जाता है, आपके बिजली बिल कभी ज़्यादा आ जाते हैं या पानी का बिल ज़्यादा आ जाता है, इस तरीके के सारे मुकदमों की सुनवाई आप पाते हैं लोक अदालतों में होती है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल कर आ रहा है। हम पाते हैं कि पिछले करीब 5 सालों में करोड़ों केसेस ऐसे हुए हैं, छोटे छोटे केसेस, जिनको की लोक अदालतों के द्वारा आपसी सुलह समझौते से कंप्लीट किया जा सका है। जी
1: आशीष जी, हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश जी। जी राकेश जी।
3: जी नमस्कार, और विशेषज्ञ को मेरा भी नमस्कार। मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार राकेश जी।
3: जी मेरा ये प्रश्न है कि जब हम लोक अदालत में जो है केस बनते हैं तो कितना टाइम हमारे को उसमें लग सकता है, मेरा ये प्रश्न है।
0: देखिए लोक अदालत एक दिन विशेष के लिए तय की जाती है, एक पर्टिकुलर डे पर आपका मैटर मार्क होता है। लेकिन लोक अदालत की चूंकि प्रक्रिया इस तरीके की होती है कि कॉन्सिलिएशन पहले जरूरी होता है, तो जब भी आपका केस लोक अदालत के लिए या आप खुद ही एप्लीकेशन के थ्रू रेफर कराते हैं या कोर्ट को कभी लगता है जिस कोर्ट में पेंडिंग है कि ये एक सुइटेबल केस हो सकता है लोक अदालत के लिए, इसको भेजा जाना चाहिए, तो उसके पहले एक कॉन्सिलिएशन की प्रोसेस, दोनों पार्टीज आपस में बैठकर बात करके कोई एक ऐसा समझौता जो कि दोनों पार्टीज को मंजूर है, जब वो चीज हो जाती है तो उसके बाद आप पाते हैं कि ये केवल एक दिन में ही समाप्त हो जाता है। किसी एक दिन विशेष के लिए लोक अदालत लगती है और अगर पार्टीज ने अपना समझौता कर लिया है तब तक तो वहां पर लोक अदालत अवार्ड पास कर देती है और वो अवार्ड एक डिक्री ऑफ द कोर्ट होता है। जी
1: आशीष, हम लोग केसेस की बात कर रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे कि ये कैसे अप्लाई किया जा सकता है।
0: जी देखिए केसेस को अप्लाई करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। इनफैक्ट केसेस में भी मैं कैटेगराइज करूंगा कि एक तरीके का केस होता है जो ऑलरेडी फाइल हो चुका है और कोर्ट

0: में चल रहा है। दूसरा एक तरीका ये होता है कि आप कोर्ट में केस फाइल करने के बारे में सोच रहे हैं। तो जो ऐसे मामले हैं जहां पर कोई पार्टी कोर्ट में केस फाइल करने के बारे में सोच रही है, वो कंसर्न कोर्ट की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास, लीगल सर्विसेज कमेटी के पास एक एप्लीकेशन दे सकती है और उस एप्लीकेशन के बाद दोनों पार्टीज़ को नोटिस चली जाती है कि ये आपका कोर्ट, आपका केस इस पर्टिकुलर मीडिएशन के लिए, लोक अदालत के लिए रेफर किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैटर ऑलरेडी चल रहे हैं वहाँ पर या दोनों पार्टीज़ आपस में कंसेंट इस चीज़ के लिए दे सकती हैं कोर्ट को, या एक पार्टी एप्लीकेशन दे सकती है कोर्ट के सामने और कोर्ट को लगता है कि ये एक सही मामला हो सकता है जहाँ पर लोक अदालत के थ्रू कोई निर्णय निकल सकता है
1: जी।
0: या फिर अगर दोनों पार्टीज की भी कंसेंट नहीं है फिर भी अगर कोर्ट को लगता है कि पार्टीज एक्सप्लोर कर सकती हैं और कोर्ट को समझ में आ रहा है कि ये इस तरीके की चीजें हो सकती हैं सुलह समझौता, तो कोर्ट सुओ मोटो भी मैटर को लोक अदालत को रेफर कर सकती है।
1: जी आशीष जी, आज के इस कार्यक्रम में हम लोक अदालत की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं। तो एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दरभंगा बिहार से, मोहन पासवान जी। जी मोहन जी।
2: जी जय हिंद मैडम इकट्ठे।
1: जी जय हिंद।
0: जय हिंद मोहन जी।
2: जी मैं जानना चाहता हूँ कि लोक अदालत में आम लोगों के लिए सरकारी वकील का भी व्यवस्था होता है सहायता के लिए?
0: जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज होती हैं इनके ट्विन फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन ये होता है कि जिन लोगों को एक लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, वकील नहीं मिल पा रहा है, वो उसका कोई भी कारण हो सकता है, मूलतः उसका एक आर्थिक कारण भी होता है और कई वर्गों के लिए हमारे समाज में लीगल एड की अलग से भी प्रोविजन है। ऐसे में सरकारी वकील, जिसको कि हम सरकारी वकील कहते हैं, वो बेसिकली एक लीगल एड काउंसिल होता है जो कि इम्पैनल्ड होता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज से और वो वकील आपको लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की तरफ से मार्क किया जाता है। और मेरा ये आकाशवाणी के माध्यम से सबसे अनुरोध है, देखिए किसी भी जब सुलह समझौते से कोई निर्णय निकलता है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति जो सुलह कर रहा है उसको अपने लीगल ऑप्शंस पता होने चाहिए, उसको अपने केस की मेरिट पता होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ये ही नहीं पता कि उसका केस कितना स्ट्रांग है या कितना कमजोर है तो वो कभी भी सुलह समझौते की टेबल पर एक मजबूती के साथ नहीं बैठ सकता, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं लीगल रिप्रेजेंटेशन होना, एक अच्छा कानूनी जानकार होना उस सलाह के लिए, लोक अदालत में पार्टिसिपेशन के लिए, ये आवश्यक है। और अगर आपके पास ऐसा वकील नहीं है तो आप निसंदेह, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं और लीगल एड काउंसिल्स आपकी मदद करने के लिए वहां आपको जरूर मार्क किए जाएंगे।
1: आशीष जी आइए आप एक और प्रश्न ले लेते हैं थाने से गुरुनाथ जी का। जी गुरुनाथ जी।
3: नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: मेरा क्वेश्चन था लैंड के बारे में था, जमीन का विवाद है मेरा, मेरा परिवार के अंदर जो है वो, तो उसमें मतलब लोक अदालत में जाने के लिए क्या हम सामने वालों को भी मतलब पार्टी करना पड़ेगा कि हम खुद जाके अपील कर सकते हैं?
1: जी।
3: और मेरा दूसरा सवाल है इनसे कैसे पता चले कब लोग अदालत लगती है, कोर्ट में जाए उनसे पता चले, यही पूछना था।
0: जी देखिए आपके दूसरे सवाल का पहला मैं पहले उत्तर दे देता हूँ। जो भी कंसर्न्ड कोर्ट है आपकी, जो भी ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट होगी, आप वहाँ पर जाएंगे तो एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का, लीगल सर्विसेज कमेटी का एक ऑफिस वहाँ हर कोर्ट में होता है। वो उस कोर्ट में जो नेशनल कैलेंडर है उसके अनुसार कब लोक अदालत आ रही है या कोई स्पेशल लोक अदालत का गठन किया जा रहा है, इस चीज़ को आप पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने बोली कि आपका एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, उसके लिए क्या आपको दूसरी पार्टी के साथ जाना पड़ेगा या खुद भी कर सकते हैं? देखिए इसमें अगर आप लोक अदालत में मामला ले जाना चाहते हैं और दूसरी पार्टी भी एग्री करती है, मैं मान के चलता हूँ कि आपने केस ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, तो दोनों पार्टीज़ अगली डेट पर कोर्ट के सामने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी दे सकती हैं। लेकिन अगर अगली पार्टी उस पर एग्री नहीं कर रही है, जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दे रही है, तो भी आप अपने वकील से कहकर एक एप्लीकेशन फाइल करा सकते हैं या ओरल सबमिशन भी कर सकते हैं। और कोर्ट को यदि लगता है कि इसमें एक सुलह समझौते की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है तो वो मैटर लोक अदालत को रेफर कर दिया जाएगा। और इसका सबसे बेस्ट आपको जो इसका लाभ मिलेगा कि अगर ये मैटर लोक अदालत में सेटल होता है तो

0: एक तो जो बहुत प्रॉपर्टी का मैटर है, सालों साल खिंचते हैं इस देश में, तो उसमें आपको जल्दी उस पर त्वरित रिलीफ मिल सकती है जो कि दोनों पार्टीज़ को एक्सेप्टेबल होगी, और दूसरी की साथ में साथ जो आपने कोर्ट फी फाइल करी होगी अपने केस को फाइल करने के लिए, और वो कोर्ट फी भी आपको अगर मामला लोक अदालत में सेटल हो जाता है तो वो कोर्ट फी भी आपको वापस हो जाएगी। जी
1: आशीष जी, लेकिन अगर एक पक्ष सपोज कीजिए फैसले से खुश नहीं होता है तो क्या वो ऊपर की अदालत में अपील कर सकते हैं?
0: देखिए ये कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को रहता है
1: जी।
0: लेकिन लोक अदालत का अगर आप नेचर देखेंगे, वहाँ जो अवार्ड्स का नेचर होता है वो कंसेंट से होता है। कंसेंट का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज टेबल पर साथ में बैठी, उन्होंने अपने अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और कोई एक ऐसे ऑप्शन पर पहुंचे जो कि दोनों पार्टीज के लिए एक सहमति का पॉइंट बिंदु बन सकता है। अब अगर दोनों पार्टीज किसी मामले को सेटल करती हैं और उस चीज़ को लेकर सहमत हैं तो कोई भी पार्टी उसको चैलेंज करने के लिए नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम कानूनी रूप से बात करें तो लोक अदालत के जो अवार्ड होते हैं वो फाइनल और बाइंडिंग होते हैं और ये अपीलेबल नहीं होते हैं। लेकिन एक बहुत ही, जब मैं कहता हूँ कि अपीलेबल नहीं होते हैं तो इसका ये मतलब है, केवल इतना मतलब समझिए कि इसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती है। लेकिन एक बहुत छोटी सी फाइन डिस्टिंक्शन ये भी है कि जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है देश में। जुडिशियल रिव्यू अगर लोक अदालत में भी एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जैसे परमानेंट लोक अदालत होती है वहाँ पर पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन 1 करोड़ होता है, अगर लोक अदालत ने ही अपना ज्यूरिडिक्शन को ब्रीच किया हुआ है या जो अवार्ड आया है वहाँ उसमें धोखाधड़ी करके अवार्ड आया है, जैसे एक पार्टी बैठी हुई है उसने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगाया या एक क्लेम किया जो कि सही नहीं है, गलत है, और इस तरीके से अगर आपने कोई अवार्ड को हासिल किया है तो वो जो सहमति होती है वो मानते हैं कि कंसेंट आपकी विशिएटेड है, और विशिएटेड कंसेंट के आधार पर जो एग्रीमेंट और जो फाइनली लोक अदालत में अवार्ड में कन्वर्ट हो रहा है उसको रिट पिटीशन के थ्रू हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में होता है, लोक अदालत के अवार्ड फाइनल और बाइंडिंग होते हैं और इनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है।
1: जी, इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन एक और प्रश्न ले लेते हैं दिल्ली से धर्मवीर जी का। जी धर्मवीर जी
2: नमस्कार। मैडम
1: नमस्कार,
2: मैं धर्मवीर गांधी ने दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार।
0: नमस्कार धर्मवीर
2: सर, मेरे दो सवाल हैं छोटे छोटे। जैसे कि अगर कोई 33 साल पहले अगर कोई अपराध करके भाग जाता है और उसके साथी पे मुकदमा चलता है, केस चलता है और एक्सपायर हो जाता है, जो भागा हुआ मेन अपराधी है उसकी खोज खबर निकालने के लिए हमें उसका क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा या कैसे क्या करना पड़ेगा? दूसरा सवाल ये है कि जो आजकल दहेज के मामले चलते हैं, जो शादी तो नई नई शादियों के बाद तलाक होने की नौबत आती है, तो ये बहुत अच्छा कानून में थोड़ा सा शुरुआत कर दी है कि मीडिएटर की भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई जा रही है, क्योंकि पहले तो बहुत खतरनाक केस माने जाते थे दहेज मामले में, पूरा परिवार अंदर हो जाता था। ये बहुत अच्छा सरकार या कानून ने अच्छा किया कि इसमें बहुत अच्छी तरह से बारीक की जो देख के कुछ काफी हद तक दोनों पार्टियों को, लड़के वालों को ज्यादातर सुविधा मिली है।
0: जी धर्मवीर जी, दोनों सवालों के आप के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जो आपका पहला सवाल है कि कोई अगर अपराध करके भागा हुआ है और उसका वो उसकी डेथ हो गई है और उसका साथी, मैं मानता हूँ साथी से आपका मतलब को एक्यूज से है, उसको कैसे ढूंढा जाए? तो देखिए, ये लोक अदालत में मैटर आएगा या नहीं आएगा ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो कंपाउंडेबल ऑफेंस था या नहीं था। एक अपराध ये भी हो सकता है कि किसी ने आपके साथ फाइनेंशियल गबन किया हो, आपने आपके पैसे लेकर भाग गया हो, या आपको लेट से एक छोटी मोटी चोट लगी हो जिसको कि कंपाउंडेबल एक हो सकता है न्यायिक प्रणाली को देखते हुए। इस तरीके के मामलों में तो आप लोक अदालत को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा गंभीर अपराध घटित हुआ है, ऐसा क्राइम घटित हुआ है जिसको जो कंपाउंड नहीं हो सकता, जो पार्टी आपस में सेटल नहीं कर सकती हैं, उस अपराध के लिए लोक अदालत सही फोरम नहीं है, और उसके लिए जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं देश की वही एप्रोप्रिएट फोरम होती हैं। और जब कोई भी एक्यूज्ड अगर नहीं मिल रहा है और काफी समय से एब्सकॉन्डिंग है, तो सबसे पहला एक स्टेप होता है, उसको एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एक डिक्लेयर कराया जाता है, और उसके बाद आप अपने काउंसिल से सलाह लेंगे। तो लॉ में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर देखिए इस चीज की गारंटी तो नहीं होती है कि जो भागा हुआ है वो व्यक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गारंटी इस चीज की होती है कि जो अथॉरिटीज हैं रिस्पॉन्सिबल, क्या वो एक्शन ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं। उन अथॉरिटीज को डायरेक्शन दिलवाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं कानून में जिनका की सहारा आप ले सकते हैं। दूसरा सवाल आपका दहेज उत्पीड़न से,

ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, मीडिएशन इस समय देश में काफ़ी चर्चा में है और सही कारणों से चर्चा में है। लोक अदालत और मीडिएशन में अगर आप बेसिक अंतर समझना चाहें तो लोक अदालत का जो अवार्ड होता है वो अपने आप में कोर्ट की डिग्री के बराबर होता है और वो इन्फोर्सिबल होता है। मीडिएशन क्या है? मीडिएशन में एक मीडिएटर पार्टीज़ के बीच में कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, और जब अगर पार्टीज़ के बीच में कोई समझौता हो जाता है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है, ऑप्शंस एक्सप्लोर होते हैं और कोई समझौता हो जाता है, तो उस मीडिएशन एग्रीमेंट को कोर्ट को भेजा जाता है। कोर्ट फिर उसमें ऑर्डर पास करता है, तब वो डिक्री ऑफ द कोर्ट बनता है। इसी तरीके से मीडिएशन एक बहुत ही प्राइवेट प्रोसेस है, एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है, जबकि लोक अदालत एक अदालत की तरह खुला

0: पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, और जब अगर पार्टीज के बीच में कोई समझौता हो जाता है, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है, ऑप्शंस एक्सप्लोर होते हैं और कोई समझौता हो जाता है, तो उस मीडिएशन एग्रीमेंट को कोर्ट को भेजा जाता है। कोर्ट फिर उसमें ऑर्डर पास करता है, तब वो डिक्री ऑफ द कोर्ट बनता है। इसी तरीके से मीडिएशन एक बहुत ही प्राइवेट प्रोसेस है, एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है, जबकि लोक अदालत एक अदालत की तरह एक खुला एक मंच होती है, जिसमें कि जो भी वहाँ पर मौजूद है वो उन चीज़ों को फैक्ट्स के बारे में जान सकता है। अब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड बहुत सारे मामले ऐसे देखे गए हैं जहाँ पर कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग हुआ है, और उन प्रावधानों के दुरुपयोग को देखते हुए ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं, उन ऑफेंसेस को कंपाउंडेबल बनाया गया है। अब जहाँ भी कंपाउंडेबिलिटी की बात आती है, फिर लोक अदालत अपने आप में एक सही फोरम बन जाती है। अगर सपोज करिए, देखिए, एक ट्रिनिटी ऑफ केसेस की बात होती है लीगल फ्रेटर्निटी में, कि कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, एक डिवोर्स का केस चल रहा होता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा होता है, और दहेज उत्पीड़न का केस चल रहा होता है, ये तीन केसेस आपस में मिलके चल रहे होते हैं, तो कई बार पार्टीज के पास ये ऑप्शन होता है कि आप लोक अदालतों में जाएं या मीडिएशन में जाएं। मीडिएशन भी कई तरीके के होते हैं, एक प्राइवेट मीडिएशन भी हो सकता है जो कि गांव समाज के लोग ही आपस में फैमिली मेंबर्स मिलकर बैठकर पार्टीज को समझा सकते हैं, एक एग्रीमेंट साइन हो सकता है और वो फिर सिविल कोर्ट में चला जाता है। दूसरी तरह से कोर्ट एनेक्स्ड मीडिएशन होता है, जहां पर कोर्ट में केसेस चल रहे हैं वहां पर आप पाएंगे आजकल हर एक मैट्रिमोनियल केस को सबसे पहले मीडिएशन के लिए भेज दिया जाता है, पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसे मामले जहाँ पर कानूनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ है या गलत इस्तेमाल हुआ है, और वहाँ पर जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने की पॉसिबिलिटी कानून के द्वारा दी गई है, वहाँ पर मीडिएशन को या लोक अदालतों के की फोरम को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। जी धर्मपाल जी।
1: आशीष जी, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पुणे से श्रीपद झाकड़े जी। जी श्रीपद जी।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार मैडम। नमस्कार सर।
0: नमस्कार श्रीपद जी।
2: हाँ, मेरा सवाल यह है कि मैं क्या
1: श्रीपद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आपने पीछे रेडियो ऑन किया हुआ है या टीवी ऑन किया हुआ है तो प्लीज।
2: अभी आ रही है
1: जी। हाँ बताइए।
2: हाँ, मतलब अभी दृष्टि बाधित है, मतलब हम लोगों के लिए मतलब किस प्रकार कानूनी सहायता मिल सकती है, मतलब क्या क्या प्रेफरेंस मिल सकता है कानूनी सहायता में,
1: कानूनी सहायता में किस तरह का प्रेफरेंस दिया जा सकता है?
0: देखिए, देश में कानूनी सहायता, मैं फिर से ऐसे स्टार्ट करता हूँ कि एक्सेस टू जस्टिस, न्याय सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए, यह आपका कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फंडामेंटल राइट है। अब उस राइट को इन्फोर्स कराने के लिए, उस राइट को सबको अवेलेबल कराने के लिए सरकारों की तरफ से, कोर्ट्स की तरफ से कई तरीके की व्यवस्था की गई है। जब आप बात करते हैं कि आपको किस तरीके से आप अपने राइट्स को, इन राइट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन्फोर्स करा सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं, तो हर जो भी लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी का ऑफिस होता है वहाँ पर अगर आप जाकर बात करेंगे तो एक एलिजिबिलिटी लिस्ट होती है। आप इस तरीके से समझिए कि अगर कोई देश का कमजोर वर्ग का व्यक्ति है या जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या अदर तरीके से जो डाउनट्रोडन सेक्शन हमारी सोसाइटी का है उसको बिलोंग करता है और उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए जो लीगल एड काउंसिल्स हैं उनकी व्यवस्था की गई है और बहुत सारे प्रोविजंस देश की जो कानून व्यवस्था है उसमें ऐसे किए गए हैं। लेकिन वहाँ पर जो लोग जो कैपेबल हैं, उन कैपेबल लोगों के लिए शायद उतनी आवश्यकता नहीं है स्टेट की तरफ से मदद के लिए, इसलिए एक फिल्टर लगाया जाता है। एक जो लो इनकम ग्रुप है उसके लिए लीगल एड की व्यवस्था है, जो डाउनट्रोडन सेक्शन है उसके लिए लीगल एड की व्यवस्था है, और अब पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इवन तो चूंकि समय के साथ न्याय इतना महंगा हो चुका है देश में कि जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसके लिए भी लीगल एड के प्रोविजंस हो रहे हैं। तो निसंदेह अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सही लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, उसके पीछे सामाजिक कारण हो सकते हैं, फाइनेंशियल कारण हो सकते हैं, तो आप जो कंसर्न लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, अगर आपका मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है वहाँ जाइए, या अगर हाई कोर्ट में है वहाँ जाइए। आपको कोई, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी जाएगी अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं और आपको एक सक्षम वकील कोर्ट की तरफ से मार्क

0: बिल्कुल। और न्याय वैसे भी एक सामाजिक अवधारणा है, और मुझे लगता है कि जब न्याय मिल जाता है किसी को भी तो जनता जो होती है वो अपने आप ही खुश हो जाती है। आशीष जी, एक और प्रश्न ले लेते हैं दिल्ली से संजय जी का। जी संजय जी।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।
1: संजय दिल्ली से। मैम मेरा सवाल ये है, ये इतने अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो काम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं कर पा रहे, छोटे मोटे मामले लोक अदालतों को दे दे रहे हैं। मेरा मानना है पुलिस वालों को अगर शक्ति दिखाई दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वगैरह कई ऐसे बड़े बड़े फैसले दे करके सरकारों के नियम तौर तरीके बदल देते हैं, तो क्यों ना पुलिस वालों के लिए कुछ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ये लोग, क्योंकि ज्यादातर
0: जी बीच में ही हमारी कॉल
2: आवाज कट गई, लेकिन जो उनकी मंशा थी पूछने की, क्या पुलिस वालों के ऊपर सख्ती दिखाई जानी चाहिए या नहीं दिखाई जानी चाहिए? देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं
0: जी।
2: अब इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा कई सारी अपनी जो लीगल अथॉरिटी है उसको वायलेट करते हुए ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के केसेस आते हैं, और ये आज की सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा विजिबल भी होते हैं। लेकिन एक ऑल इनकम्पासिंग या ब्लैंकेट स्टेटमेंट ऐसा कि पुलिस वालों पर सख्ती दिखाई जानी चाहिए, तो देखिए पुलिस वाले भी इसी समाज का हिस्सा हैं, वो भी सुबह से शाम तक ड्यूटी करते हैं। और विश्वास मानिए, आप जिन पुलिस वालों पर सख्ती दिखाने की बात कर रहे हैं, अगर आपको पता चलता है कि आपके इलाके से थाने को ख़त्म कर दिया गया है और दूर दूर तक कोई पुलिस वाला नहीं,
0: तो मुश्किल,
2: आप खुद अपने आप को पाएंगे कि आप सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। तो हर चीज़ के दो पहलू हैं, जहाँ पर कानून का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, वो फिर किसी के द्वारा हो, प्राइवेट सिटीजन के द्वारा हो या फिर किसी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा हो, वहां पर कानून को अपना काम करना चाहिए। लेकिन हमें इस चीज को भी समझना चाहिए कि हर पब्लिक ऑफिसर, हर पुलिस वाला भी एक ड्यूटी निभा रहा है। जी
0: जी। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं रायबरेली से, रमाशंकर जी। जी रमाशंकर जी।
3: नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: मैं ये पूछना चाहता था कि डिजिटल अगर साइबर क्राइम, सेक्सुअल क्राइम और रोड एक्सीडेंट के लिए भी लोग अदालतें सक्षम हैं?
2: जी देखिए, तीन तरीके के आपने मुकदमों की बात करी। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम अपने आप में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स एक इशू हो सकता है। साइबर क्राइम एक ऐसा भी हो सकता है जहां पर इस कंपाउंड नहीं किया जा सकता है या आपसी सुलह समझौता नहीं हो सकता है, और एक ऐसा भी हो सकता है कि देखिए साइबर अपराधों की जो डेफिनेशन है, अगर आप उसमें पाएंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हुए अगर आपको डिसीव किया गया है, आपके साथ चीटिंग करी गई है, आपको फाइनेंशियल लॉस पहुँचाया गया है, और ऐसा प्रोविज़न है कि आप जिस व्यक्ति ने वो अपराध किया है उसके साथ बैठकर मामले को सुलह समझौते से ख़त्म करना चाहते हैं, वो आपको आपके पैसे लूटे हुए वापस कर देना चाहता है और आप नहीं चाहते कि आगे चीज़ों को परसू किया जाए, ऐसे कुछ विशेष मामलों में साइबर अपराधों में भी लोक अदालत की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आप पाएंगे कि ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरी चीज़, आपने मोटर एक्सीडेंट की बात करी। मोटर एक्सीडेंट भी देखिए दो तरीके से केसेस होते हैं। पहला केस होता है कि अगर आप कोई व्यक्ति रोड पर जा रहा है और किसी ने एक इंटेंशनली उसको एक्सीडेंट कर दिया या लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कर दिया, तो वो एक बहुत ही डिफरेंट केस हो सकता है। लेकिन मोटर एक्सीडेंट से रिलेटेड आप पाएंगे बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहां पर कॉम्पनसेशन क्लेम किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी से कॉम्पनसेशन क्लेम किया जाता है, जो एक्यूज्ड पर्सन होता है उससे कॉम्पनसेशन की बात हो सकती है। तो ऐसे मामले विशेष रूप से लोक अदालतों में जाते हैं और बहुत ही इसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा हुआ है। लेकिन इसी पॉइंट पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको एक अच्छे लीग जिस जब अगर आप मोटर एक्सीडेंट क्लेम से रिलेटेड मामले को लोक अदालत में लेकर जाते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा काउंसिल भी अपने साथ रखना चाहिए जो कि आपको बता सके कि आपके लीगल राइट्स क्या हैं। कई बार कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज की जो नेगोशिएशन की पावर होती है वो एक विक्टिम की नेगोशिएशन पावर से बहुत ज़्यादा होती है। लोक अदालत में जो भी आपके अवार्ड आते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि जो भी आप वहाँ पर अपने लिए निर्णय लें, जो भी सुलह समझौता करें, वो एक इन्फॉर्म्ड सुलह समझौता होना चाहिए, वो एक इग्नोरेंट स्टेज में लिया गया सुलह समझौता नहीं हो सकता है। तीसरा जो इन्होंने एक तीसरे क्राइम की बात करी, इफ़ यू कैन रिकॉल इट, आपने तीस एक और क्राइम की बात करी थी।
0: लेकिन हमारे पास समय कम है, हम अगले जो है प्रोग्राम में जरूर इसको शामिल करेंगे। लेकिन अंत में चलते चलते हम ये भी जानना चाहेंगे आशीष जी आपसे कि एक नागरिक के रूप में हम कैसे लोक अदालत को सफल बना सकते हैं।
2: देखिए लोक

0: آج کی دیش آپ کی جو آج سناریو ہے یہ اس طریقے کا ہو گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر ہم کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں. پہلے دیش میں ایک ایسا سماجک انوائرمنٹ تھا کہ بہت سارے جو جھگڑے تھے وہ آپس میں پریوار اور سماج مل کر ہی صلح کرا کر سماپت کر دیتا تھا. لیکن ایک اس کا پہلو یہ بھی تھا کہ بہت ایسی ساری جو گھٹنائیں جو کہ رپورٹ ہونی چاہیے وہ بھی کہیں نہ کہیں سماجک دباؤ میں آگے رپورٹ نہیں ہو پاتی تھیں. اب آج کی ڈیٹ میں آپ کے سوال کو آنسر کرنے کے لیے ایک سمپل سا منتر یہ ہے کہ وہ ایسے سارے ڈسپیوٹس جس میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی گمبھیر اپرادھ نہیں ہوا ہے, اور ایسا اپرادھ جہاں پر آپ آپس میں بیٹھ کر چیزوں کو بات کر کے شاید ایک بہتر بھوش کے لیے ایک ایسے سمجھوتے کی طرف پہنچ سکتے ہیں جو کہ دونوں پارٹیز کو منظور ہو, جس طریقے سے پاروارک ڈسپیوٹ ہوتے ہیں, پریوار میں پراپرٹی ڈسپیوٹ بھی ہوتے ہیں, میٹریمونیل ڈسپیوٹ بھی ہوتے ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ ان معاملوں کو لوک عدالت میں لے کر جائیں اور کھلے من سے جائیں, کھلی صلاح کے ساتھ جائیں اور آپ کو وہاں سفلتا ملے گی.
1: بہت بہت دھنیہ واد آشیش جی, آپ کاریہکرم میں آئے اور اپنا قیمتی سمے ہمیں دیا. تو اس کے ساتھ ہی فرحت کو دیجیے اجازت. نمسکار.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार. रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई. परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई. मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे. श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है.
3: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में. वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे. ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे. 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ.
2: गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया. इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की.
4: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है. ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है.
2: इससे पहले गृहमंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की. श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है. श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें अब केवल विवादों के समाधान का मंच नहीं रह गई हैं, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी ढील देने का निर्देश दिया है. अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे. निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है. इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीटों और पुदुचेरी की 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है. आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मुदरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा. मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्यनिकेतन

0: There are no longer any disputes among the states of the western region, which is a major achievement. He emphasized that the zonal councils have evolved from forums for dispute resolution into platforms for monitoring the implementation of public welfare schemes. Mr. Shah said that all the issues discussed in today's meeting were related to monitoring. He noted that several disputes between states over rivers have also been resolved in the zonal council. The meeting was attended by Goa Chief Minister Pramod Sawant, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and Administrator of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Praful K. Patel. The Election Commission today announced bipoll to Nagaon Lok Sabha seat in Assam. It has also announced assembly bipolls for two seats each in Tamil Nadu and West Bengal and one seat in Puducherry. The Commission said Madurantakam and Dharapuram seats in Tamil Nadu, Rejinagar and Nandigram seats in West Bengal and Tathanchavali assembly seat in Puducherry will go to polls. And reigning world champion Sheetal Devi has confirmed a medal for India by storming into the women's compound individual final on the third day of the Stage 3 of World Archery Para Series in Ahmedabad today. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar. Akashwani se Vishwa Darpan ke saath main Bhavtarini. मुख्य समाचार. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बैटल के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. कहा, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध. ईरान ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य से अस्थायी सुरक्षित मार्ग के मुद्दे पर ओमान के साथ वार्ता अंतिम चरण में. दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में 12 लोगों की मौत. नेपाल में बाढ़ पीड़ितों की याद में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया. और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची. भारत का पदक पक्का. अब समाचार विस्तार से. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच मजबूत और भरोसेमंद संबंध हैं. डॉ जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बैटल से मुलाकात के दौरान कही. विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया.
2: Ours is a very trusted relationship.
3: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है. ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं. खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में.
2: Ratification likely in the coming future.
1: इस अवसर पर श्री जेवियर बैटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए. नई दिल्ली में फार्मा मैकटेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही.
4: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो. न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले, बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें. सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें.
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की. बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई. इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई. ईरान ने आज कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए अस्थायी मार्ग बनाने को लेकर ओमान के साथ उसकी बातचीत अंतिम चरण में है. तेहरान

0: में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बताया कि समझौते को आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के साथ पंजीकृत किया जा सकता है। प्रवक्ता ने जलमार्ग में असुरक्षा के लिए अमेरिका और इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि क्षेत्र में तनाव जारी रहा तो व्यावसायिक जहाज इस मार्ग पर सुरक्षित महसूस नहीं कर सकेंगे। कल कतर के एक प्रतिनिधिमंडल के ईरान दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यात्रा मध्य पूर्व में तनाव कम करने के कतर के प्रयासों का हिस्सा थी। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई है। कफर रुमाने गांव में एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में 11 लोग मारे गए, जिनमें 2 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। एक दूसरे हमले में वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें एक चिकित्सा कर्मी की मौत हो गई। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 3 दिनों में दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 27 लोगों की जान जा चुकी है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्ला के ठिकानों और हथियार ले जा रहे लोगों को निशाना बनाया। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने आज दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पूर्व और दक्षिण में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में 5 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया। ये अभ्यास निर्धारित समय पर हो रहा है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हाल ही में सियोल वाशिंगटन के महत्वपूर्ण अभ्यासों को सीमित कर दिया गया था। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा कि वार्षिक रक्षात्मक अभ्यास का उद्देश्य समुद्री, हवाई और साइबर क्षेत्रों में 3 देशों की परिचालन और संयुक्त प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करना है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। हूती गुट ने सऊदी अरब पर यमन के कई प्रांतों में हवाई और क्रूज मिसाइल हमले करने का आरोप लगाया है। ईरान समर्थित सशस्त्र गुट ने कहा कि सऊदी अरब ने अलजौफ, अलवायदा, मारिब और ताइज प्रांतों में कई हवाई हमलों और क्रूज मिसाइल हमले किए। हूती ने उत्तरी प्रांत अलजौफ के खब व अशराफ जिले के ऊपर सऊदी अरब के CH-4 टोही ड्रोन को मार गिराया।
1: यमन के सरकारी बलों ने कहा कि उनके लड़ाकू विमानों ने आज दिन में मध्य प्रांत अलबायदा में हूती ठिकानों पर 13 हमले किए। सरकारी बलों ने अलजौफ में भी नया सैन्य अभियान शुरू किया और प्रांतीय राजधानी अलहज्म के पूर्व में स्थित हूती नियंत्रण वाले अल लबनात सैन्य अड्डे की ओर बढ़ रहे हैं। इन क्षेत्रों में पिछले 4 दिनों से जारी भीषण लड़ाई में दोनों पक्षों के कम से कम 117 लड़ाके मारे गए हैं। यमन में वर्ष 2014 के अंत से संघर्ष जारी है। उस समय हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना और उत्तरी यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: COP31 सम्मेलन से कुछ सप्ताह पहले अजरबैजान की राजधानी बाकू में आज 4th संयुक्त राष्ट्र जलवायु सप्ताह की शुरुआत हुई। सरकारी, वित्तीय संस्थानों, कंपनियों और जलवायु विशेषज्ञों की ये 5 दिन की बैठक 11 सितम्बर तक चलेगी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए खर्च किया गया प्रत्येक डॉलर $15 का आर्थिक लाभ सृजित कर सकता है। हालांकि रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई में देरी से दुनिया को हर साल 1.5 लाख करोड़ डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन की इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर एक साथ मिलकर काम करने से स्वास्थ्य देखभाल खर्च में कमी आएगी, कामगारों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और मौसम की अनिश्चितता से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसके अनुसार साल 2025 में दुनिया भर में करीब 64 लाख लोगों की असामयिक मौत बाहरी वायु प्रदूषण के कारण हुई, जबकि घरों के भीतर होने वाले प्रदूषण से 20 लाख लोगों की जान गई। संयुक्त राष्ट्र का कहना है इस समस्या से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, आधुनिक रसोई ईंधन, बेहतर खेती और ठोस कचरा प्रबंधन जैसे समाधान पहले से मौजूद हैं। रिपोर्ट का अनुमान है कि अगर साल 2050 तक ऐसे 25 उपायों को पूरी तरह लागू कर दिया जाए तो प्रदूषण से होने वाली 14 करोड़ 40 लाख असमय मौतों को रोका जा सकता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार

0: नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363, उसके बाद नवलपरासी पूर्व में 222, नवलपरासी पश्चिम में 221 और रसुआ में 169 दर्ज की गई है। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बैटल के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कहा कि विश्व वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध। ईरान ने कहा हॉर्मुज जलडब्रू मद से अस्थायी सुरक्षित मार्ग के मुद्दे पर ओमान के साथ वार्ता अंतिम चरण में। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम आर एस रघु विद वर्ल्ड न्यूज।

0: With this, this is your Ajani signing off from the studios of Akashwani Chennai for 100.41 FM Gold. Hope you had a great time as much as I had. It's in a short while, it's time for news to be relayed from Delhi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कम्प्लीट हुआ।
1: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
3: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी ढील देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीटों और पुदुचेरी की 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। दक्षिण लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई है। कफर रोमाने गांव में एक रिहायशी इमारत

0: This is Akashwani. Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll be taking your calls on your market related queries. But do remember that we do not address stock or company specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers, the Delhi STD code if you are calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, vyapar, arthvyavastha aur share bazaar se juda koi bhi prashn poochne ke liye aap dial kijiye 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें, लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवाल इस कार्यक्रम में उसके जवाब हम नहीं दे पाएंगे. चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं मार्केट विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार प्राची, नमस्कार निशित और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन.
1: आइए श्रोताओं, एक नजर डालें आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: The benchmark domestic indices decline, Sensex slips nearly 400 points, Nifty settles below 23,800. The global crude oil prices rise and Prime Minister Narendra Modi to address the global FinTech Fest 2026 in Mumbai tomorrow.
1: Pramukh gharelu share suchakankon mein giravat, Sensex lagbhag 400 ank phisla, Nifty 23,800 ke niche band hua. Duniya bhar mein kacche tel ke daam badhe aur Pradhan Mantri Narendra Modi kal Mumbai mein ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करेंगे.

0: Before we proceed, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: खबरों पर बात करेंगे, आपके सवाल के जवाब भी हमारे हमारे एक्सपर्ट देंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि दिन के अंतराल में शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया। श्रोताओं, आज प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आधा प्रतिशत फिसले। सेंसेक्स 383 अंक लुढ़ककर 76,133 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 119 अंक लुढ़ककर 23,779 पर स्थिर हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक आधा प्रतिशत गिरा, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में कोई खास बदलाव दर्ज नहीं किया गया। इससे पहले कच्चे तेल के ऊंचे दाम और पश्चिम एशिया में पुनः तनाव बढ़ने से बाजार मामूली गिरावट के साथ खुले। सत्र के दौरान दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांक दबाव में रहे, क्योंकि सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बिकवाली दर्ज की गई।
0: So benchmark domestic equity indices ended 0.5% lower today. The Sensex declined 383 points to close at 76,133, while the Nifty shed 119 points to settle at 23,779. Meanwhile, the broader market at the National Stock Exchange, the Mid Cap 100

0: index fell 0.5%, while the small cap 100 index ended largely unchanged. Earlier, the markets opened marginally down amid elevated crude oil prices and renewed hostilities in West Asia. Both benchmark indices remained under pressure throughout the session as a broad-based sell-off was witnessed across sectors.
1: Sensex में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई. सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इंफोसिस 3.8%, टेक महिंद्रा 2% और टाटा स्टील 1.8% नीचे आए. वहीं लार्सन एंड टूब्रो और भारतीय एयरटेल में 0.5% से अधिक, मारुति में 0.5% और पावर ग्रिड के शेयर भी लगभग 0.5% बढ़े.
0: And in the sectoral indices, in the Bombay Stock Exchange, 23 out of 28 sectors edged downwards. Among the top underperformers, focused IT lost 2.2%, IT decreased 2.1%, and realty as well as insurance dropped 1.4%. In contrast, telecommunication rose 1.6%, healthcare added 0.7%, and hospitals gained 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,571 companies declined, 1,925 advanced, and 233 remained unchanged.
1: और अब जानेंगे रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में अपरिवर्तित रूप से ₹94.49 पर बंद हुआ. इसी के साथ कोलकाता से पहली कॉल हम ले रहे हैं. इनका नाम है अरिजीत. अरिजीत, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: थैंक यू एंड गुड इवनिंग टू मार्केट मुद्रा एंड शरद जी, वेरी बिग फैन.
3: गुड इवनिंग
2: सर, मेरा दो सवाल है आपसे.
3: जी,
2: पहला तो ये है कि प्रोविडेंट फंड का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है अभी करेंटली, और पहले और सेकंड मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरा एक प्रोविडेंट फंड और एक शेयर का एक बात है, तो वो दे आर इन द प्रोसेस, मगर जो लोग डील करे कर रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि मेरा कोई हेल्थ, मेरे फैमिली में कोई जिंदा नहीं है, तो मेरा कोई नॉमिनी नहीं है. अगर नॉमिनी का नाम मैं नहीं डालूं तो वो गवर्नमेंट से वो पैसा रिलीज नहीं करेंगे, क्या ये सच है या झूठ?
3: देखिए अरिजीत, अगर आप पहले आपका दूसरा वाला सवाल लेते हैं, अगर नॉमिनी का नाम नहीं है तो इसमें फिर प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि आपको कोर्ट से एक सक्सेशन सर्टिफिकेट फिर लेना पड़ता है, और उस कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके उसके आधार पर फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. तो बेहतर तो यही है कि आप नॉमिनी रखिए, या फिर जिस डिपार्टमेंट से आप लेना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट का जो इंटरनल प्रोसीजर है उस प्रोसीजर का आपको ध्यान रखना चाहते हैं और लिखना चाहिए. और दूसरा आपका पहला सवाल पीएफ का इंटरेस्ट रेट तो मेरे ख्याल सभी लोग जानते हैं. आई थिंक इट इज़ अबाउट 7. पीपीएफ का 7.1 है, पर पीएफ का शायद ये पूछ रहे हैं. पीएफ का 8.25 के आसपास है. पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है. आप ये शायद प्रोविडेंट फंड का जानना चाहते थे. 8.25 के आसपास है. पर आप, मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप गवर्नमेंट जिस डिपार्टमेंट से आप लेना चाहते हैं वहाँ संपर्क करें, क्योंकि कई दफ़े क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पोस्थ्यूमस प्रोसेस अलग होते हैं. बाकी जो लीगल प्रोसेस है वो या तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके होता है या फिर आप नॉमिनी के थ्रू उसको ले सकते हैं.
0: राइट, टॉकिंग ऑफ द मार्केट्स टुडे शरद जी, what we are witnessing over the past few sessions of course is not surprising though, but still there is some factor of concern as well. How do you visualize this? How do you perceive this?
3: Well, I think Nishit, the markets are looking right now more outwards. If markets look internally to the country, we had 7.8% GDP. We had all the four cylinders of the economy, the private consumption, government expenditure,
1: right,
3: private investments, exports, they are all shining. But somehow I think I was talking to another platform today and I said the market seemed to be looking more outwards, because the markets look at West Asia, crude oil prices, aggression between Iran and US, bond yields, dollar index. I think those are the factors which are sort of overshadowing our internal growth at this point of time. So I'm sure, in fact, through Market Mantra today, if I'm said there are a lot of market operators who listen to this program, I would like to request to please start looking inwards. Look at what is happening within the country. They seem to be becoming more international, but in the process, they are looking at all the negative things which are coming out. Obviously, it does depress the sentiment, but within our country, we are doing fairly okay. So I think the day we start looking inwards, you will find the market today broke a very important technical level of 23,850 on the technical charts. This becomes a matter of concern because there could be further slide, I hope. And the crude oil prices, look at them, they were getting closer and closer to 100.

0: the Indian basket of crude is beyond 100 now. In fact, we are heading for a time where the oil marketing companies may have to at some point of time take a call to invoke another rise in petrol and diesel prices. So those concerns are, I think, counting on the minds.
1: बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई.
2: लेट्स नॉट फॉरगेट द ब्लैक शीप इन द लॉट, मिस्टर ट्रंप एज वेल.
0: ओह यस, ही इज ऑलवेज इन द न्यूज़.
1: आगे बढ़ते हैं और अगली कॉल लेते हैं. ये है मुंबई से रत्नाकर. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: हेलो, गुड इवनिंग मैडम. मेरा सवाल है कि ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होता है
0: जी,
3: उसके बारे में रिटेल इन्वेस्टर के लिए, समझो कॉमन मैन को उसमें एंट्री करना है, तो कैसे कर सकते हैं और वो डिजिटली प्लेटफॉर्म क्या है उसका और उसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, उसके बारे में थोड़े बताइए. और दूसरा मेरा सवाल है कि वे जो अभी एक न्यूज आई थी कि जीडीपी रेट अपना बढ़ने वाला है 7 point और कुछ, तो उसका कॉमन मैन के ऊपर, नहीं तो ये जो एफएमसीजी सेक्टर है, नहीं तो खुदरा बाजार है, उसमें उसका क्या परिणाम हो सकता है?
0: दोनों सवाल रत्नाकर जी के बहुत अच्छे हैं. आज बहुत दिनों बाद इनसे बात करने का मौका मिला. फॉरेक्स ट्रेडिंग, रत्नाकर जी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि हम यहाँ निजी प्लेटफॉर्म्स का नाम तो नहीं लेते हैं, तो इसलिए मैं आपको कोई ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म तो यहाँ नहीं बता पाऊंगा. पर अगर आप ऑनलाइन जाएंगे, पर मैं आपको एक तरीके से सतर्क जरूर करना चाहता हूं कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वो भी बहुत वॉलेटाइल ट्रेडिंग होती है. आप विभिन्न करेंसीज को आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, आप अनुमान लगाते हैं कि 15 दिन बाद डॉलर बढ़ जाएगा, यूरो बढ़ जाएगा, येन बढ़ जाएगा, ब्रिटिश पाउंड बढ़ जाएगा, घट जाएगा, जो भी आप करते हैं. तो थोड़ा सा जोखिम भरा काम है, क्योंकि इसमें बहुत शार्प मूवमेंट्स होते हैं और बहुत तेज़ी से मूवमेंट होते हैं और 24 घंटे होती है ये. तो आप तो रात को सो रहे होते हैं, मैं उम्मीद तो यही करता हूँ. तो जब आप सो रहे होंगे और रात को उस समय मान लीजिए कीमत जो आप तलाश रहे हैं वो कीमत उस समय आई, तो आप कैसे उसमें से निकल पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी. तो उसमें बहुत ही एक्टिव और 24 घंटे की मॉनिटरिंग उसमें चाहिए होती है. और दूसरा आपने पूछा जीडीपी का 7.8% का कॉमन मैन पे, जीडीपी का देखिए रत्नाकर जी, उसका इम्पैक्ट लगभग सभी सेक्टर्स पर पड़ता है. और चाहे एफएमसीजी हो, चाहे वो स्टील सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, क्योंकि जीडीपी जब बढ़ती है तो वो ओवरऑल बढ़ती है, वो ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्टर बढ़ता है. हर सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट अलग अलग किस्म का होता है. तो इसलिए संक्षेप में तो मैं यही बता सकता हूँ. बाकी आपने जो सवाल पूछा उसका बहुत विस्तृत जवाब है और बहुत लंबा डिस्कशन मांगता है. मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे कि दो लोग और क्यों में हैं. तो
1: बिल्कुल शरद जी, क्योंकि समय की परिधि है और भी कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं. तो दिल्ली से प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं. प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: हेलो
1: जी.
0: जी प्रकाश जी, बताइए.
4: हाँ जी, मार्केट मंत्री टीम पे नमस्कार.
0: नमस्कार
4: शरद जी को भी नमस्कार. सर
0: बिल्कुल नमस्कार.
4: सर मेरा एक छोटा सा सवाल है
0: जी,
4: शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है
0: जी,
4: क्या वो नेग्लिजिबल भी हो
0: जी,
4: तो भी क्या उसके लिए ITR2 भरना पड़ता है? क्योंकि अगर कोई मैं SIP कर रहा हूँ, जो इंस्टॉलमेंट एक साल के कम अवधि की है वो मैं रिडीम कर देता हूँ, तो क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जरूरी है कि ITR2 भरा जाए?
0: नियम तो यही है प्रकाश जी के, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको ITR2 भरना चाहिए. सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो और एक मकान हो और 50 लाख से कम आए हो तो आप जो सरल फॉर्म है फॉर्म 1, बाकी नियम तो यही है. पर प्रकाश जी आपके, मुझे लग रहा है आपका कंसर्न शायद इसलिए है, और मैं प्राची और निशित को भी बताऊं, क्योंकि ITR2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा लंबा होता है. पर आपको सच बताऊं तो तभी तक कॉम्प्लिकेटेड है जब तक आपने उसको खोल के नहीं देखा. बहुत बहुत प्रोग्राम्ड है, हर चीज़ का नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आगे क्या करना है ये लिखा हुआ है, उसको इतना सिस्टमैटिक बना दिया गया है. तो प्रकाश जी घबराइए नहीं, आप ITR2 भरिए और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी. कोई परेशानी आती है तो आप अगले कार्यक्रम में हमसे दोबारा यहाँ मार्केट मंत्रा में जुड़ के कभी भी पूछ सकते हैं.
1: जरूर. दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं. अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, अपना सवाल.
5: हाँ नमस्कार सर, देखो कोहली सर से मेरा प्रश्न सर ये है सर
0: जी,
5: कि 2025 फर्स्ट क्वार्टर में हमारी GDP 6.9% थी सर
0: जी,
5: और 2026-27 में अभी हम पहले तिमाही में 7.8 पे आ गए हैं
0: जी.
5: तो मैं सर यही आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसे कौन से की फैक्टर, कौन से मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, या फिर IIP का डेटा बढ़ा है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर इतने तेजी से बढ़े हैं ताकि हम 6.9 से 7.8 आए. हालांकि अच्छी चीज है, गुड है. और सर एक MTF फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़ा सवाल है सर
0: जी.

0: तो मेरा शंका ये है सर कि जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बड़ी अच्छी चीज है कि कर मुक्त मतलब टैक्स फ्री हमारा सामान दूसरे देश में दूसरे सामान के देश हमारे देश में आ जाएगी, हमारी पहुंच बढ़ेगी। लेकिन सर मुझे ये भी डर लगता है कि हम जिन देशों से आयात निर्यात कर रहे थे तो इससे ट्रेड बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। जैसे मान लो हम 100 रुपए की चीज एक्सपोर्ट करते हैं सर, तो हम टैक्स रेवेन्यू हमारे 20% के हिसाब से 20 रुपए बनता है मान लीजिए, और हम उनसे आयात करते हैं 50 रुपए का, तो उनको हम 20% अगर हम टैक्स देते हैं 10 रुपए का टैक्स देते हैं, ओवरऑल में हमें 10 रुपया नेट प्रॉफिट में आता है, तो ये ट्रेड बैलेंस गड़बड़ तो नहीं हो सकता सर? धन्यवाद सर।
1: चलिए, इनका पहला सवाल जीडीपी से संबंधित है। अभी पिछले श्रोता में भी शायद उन्होंने रत्नाकर जी थे, उन्होंने ही पूछा था। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं जब अमित देखा जाता है इसमें। हमारा जो जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी बड़ा है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने फायर किया है वो सिलेंडर भी बड़ा है, हमारा सर्विसेज सेक्टर भी बड़ा है, सबकी परसेंटेजेस हैं जो बड़ा है। उसके अलावा 4 सिलेंडर्स की मैंने बात करी थी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट केपेक्स, कंजम्पशन हमारी बड़ी है, उसके अलावा एक्सपोर्ट्स भी हमारे 10-12-11-9-10% बढ़े हैं। तो चारों इंजन्स ने फायर किया। और मैं यहाँ पर प्राची और निशित की इजाजत से ये भी बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग इसको आलोचनात्मक दृष्टि से देख रहे थे कि 7.8 बढ़ी है तो फील गुड फैक्टर नहीं है। तो आप अर्थव्यवस्था जब बढ़ती है तो उनके नंबर्स को हमें देखना चाहिए, और भारत जैसी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में हर व्यक्ति ये उम्मीद रखता है कि 7.8% मेरी जेब में आया कि नहीं आया, जबकि ऐसे नहीं होता। ये अभी एक क्वार्टर की है, कालांतर में जब लगातार तेज बढ़ती है तो पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति को भी इसका लाभ मिलता है। इनका दूसरा सवाल एफटीए से था, कोई ट्रेड बैलेंस नहीं बिगड़ेगा हमारा अमित, इससे तो उल्टा सुधरेगा क्योंकि ट्रेड डेफिसिट तो हमारा कम होता है क्योंकि अब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट तो हमें जितना जरूरत है उतना करेंगे, पर हमारा सामान यहां से $860 बिलियन का हम साल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसकी गिनती बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी और भारतीय एमएसएमई के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज निकलेगी। आप डर दिमाग से निकाल दीजिए अमित, आपके मन में आपने कहा कोई डर है, कोई डर नहीं है, तो प्रशंसा की बात है, तारीफ की बात है, खुश होने की बात है।
2: दिल्ली से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, इनका नाम है वत्सराज। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार। नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम।
2: नमस्कार
3: शरद कोहली जी को प्रणाम।
1: प्रणाम।
3: सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा शरद कोहली जी को, क्योंकि जितनी सरल भाषा में ये सारी चीज हमें बताते हैं वो बिल्कुल खाने में बैठ जाती है।
1: धन्यवाद। सवाल पूछिए।
3: मैं सर आपकी एक सहमति चाहता हूँ। पिछले आपके सेशन में एक क्वेश्चन आया था
1: जी,
3: और उसका आपने आंसर किया था। एक क्वेश्चन था कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक एलटीसीजी या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आदमी को अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है
1: जी।
3: तो मैं सहमति ये चाहता हूँ कि मिनिमम क्या इतना बुक कर लेना चाहिए जितना गवर्नमेंट हमें रिबेट देती है, 1 लाख या 1.25 लाख के करीब जो रिबेट देती है उतना तो मिनिमम बुक कर लेना चाहिए। क्या मैं इस मामले में सही हूँ?
1: वत्सराज जी, ये इसको हम टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं जो आप कह रहे हैं। टैक्स हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो 1,25,000 का इक्विटी पे हमको छूट मिलती है, पहले सेक्शन 112A उसको कहते थे, जो पुराने एक्ट में अभी लोगों के मुंह पे वही चढ़ा हुआ है, तो मैं नए सेक्शंस अभी नहीं बोल रहा हूँ, तो कर लेना चाहिए। पर इसमें खाली टैक्स वत्सराज जी एक कंसिडरेशन नहीं है। मैंने जो बताया था, क्योंकि मार्केट जिस प्रकार से इस समय बिहेव कर रहा है, हो सकता है कोई वेस्ट एशिया से अभी जो खबरें आ रही हैं शायद और मामला बिगड़ जाए, क्रूड ऑयल की कीमतें 100 के आसपास जा रही हैं, तो टैक्स तो एक मैटर होता है। और मैं समझता हूँ आप जो बात कह रहे हैं वो सामान्य परिस्थिति में होता है कि आपने टैक्स हार्वेस्टिंग कर ली, कि आपने बुक कर लिया और फिर उसको री इन्वेस्ट कर दिया। पर इस समय अगर प्रॉफिट अच्छा है, ये बहुत सब्जेक्टिव सवाल है वत्सराज जी आपका, कि कितना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगा, अलग होगा। पर मैं ये मानता हूँ प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। मुझे लग रहा है अगर ऐसे वक्त में मुनाफा है तो बुक करके चलना चाहिए। इस समय 1,25,000 टैक्स को आप सेकेंडरी कंसिडरेशन रखिए और प्रॉफिट को आप मुख्य रखिए। मुख्य और गौण कहते हैं अगर हिंदी में, मेरी हिंदी अगर मैं ठीक मुझे बता रही है, तो मुख्य रखिए आप प्रॉफिट को, टैक्स को गौण रखिए, पर 1,25,000 अगर हो रहा है तो अच्छी बात है।
2: आइए जानते हैं क्या है अगला सवाल। नोएडा से हमारे साथ विनय कुमार जुड़ रहे हैं। विनय जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे मार्केट मंत्री टीम का अभिनंदन करता हूँ।
1: धन्यवाद।
4: शरद कोहली साहब का मैं भी एक फैन हूँ।
1: माय प्लेजर सर।
4: मेरा प्रश्न आज ये है कि अभी पूरी शेयर मार्केट में काफी अनिश्चितता है और आज काफी बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल भी 23,850 का टूट गया है।
1: बिल्कुल।
4: तो इस समय में रिटेल इन्वेस्टर की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए सर?
1: बहुत अच्छा सवाल है विनय। देखिए, मार्केट के बारे में मेरा नज़रिया अभी तक जो रहता था, प्राची निश्चित जानते हैं, मैं हमेशा ये कहता था कि मार्केट में आप लंबे वक्त के लिए बने रहिए, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए। थोड़ा सा ये जो हाल में डेवलपमेंट्स हुए

0: सो मेरे नजरिए में मैंने समय अनुसार बदलाव किया है और मैं आज इनकी इजाजत से वो बदलाव बताना चाहूंगा। बदलाव ये है कि मुझे यहाँ से मार्केट के लिए थोड़ा सा आगे वाले कुछ समय टफ नजर आ रहा है, क्योंकि जो भू राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, जियो पोलिटिकल जिसको कहते हैं, और भू आर्थिक परिस्थितियां जो बन रही हैं जिसको जियो इकोनॉमिक कहते हैं, वो परिस्थितियां बहुत अनुकूल मुझे यहाँ से नहीं नजर आ रही हैं। रशिया नेटो में टेंशन है, ईरान इसराइल कभी खत्म ही नहीं होने में आ रहा है, 6 महीने से ऊपर हो गए, 4.5 साल रशिया यूक्रेन को हो गए। तो मुझे लग रहा है विनय, यहाँ पर रिटेल निवेशकों को जो बहुत अच्छे वैल्यूएटेड शेयर्स हैं, जहाँ एक्स्ट्रॉर्डनरी वैल्यूएशंस हैं, उसमें तो आप उसको लेके रख सकते हैं। पर ज़्यादातर कभी कभी क्या होता है, मैं हालांकि ये कहने में थोड़ा संकोच कर रहा हूँ, कभी कभी ना इन्वेस्ट करना भी विनय एक स्ट्रैटेजी होती है। निवेश करना तो स्ट्रैटेजी होती है, पर कभी कभी दूर बैठ के और तमाशा देखना भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप दूर बैठ के ऑब्जर्व करिए। तमाशा शब्द मैं एक हल्के अंदाज में, मतलब आप उसको ऑब्जर्व करिए, थोड़ा सा मार्केट का फैब्रिक जब सुधरेगा अभिनय, तब आप उसमें एंटर करिएगा, क्योंकि अभी हमें मार्केट का यहाँ से बॉटम नहीं मालूम है। और ये जो मैंने बात करी, ये सभी श्रोताओं के लिए है। अब कोई कहेगा कि कोहली साहब तो पहले कहते थे कि भाई आप लंबे वक्त के लिए बने रहिए, 5 साल 10 साल बने रहिए, पर अब परिस्थितियाँ जिस हिसाब से बदलती हैं आपको उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। मैं तो निवेश के लिए बात कहता हूँ कि आपको हर 3 महीने में अब रिव्यू करने का वक्त आ गया है। तो इसलिए विनय, मैं उम्मीद करता हूँ आपको संदेश मिल गया होगा और आप उसके अनुसार अपना निर्णय ले सकते हैं। हालांकि निवेश की सलाह आपको अपने फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लेने चाहिए, और जो शुरू में डिस्क्लेमर और आखिर में डिस्क्लेमर पढ़ा जाता है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। श्रोताओं, एशिया के शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4.5% से अधिक बढ़ा, जबकि जापान के निकेई सूचकांक में 2% से अधिक वृद्धि हुई।
2: शरद जी, हाउ डू वी सी दिस एशियन मार्केट्स ऑलमोस्ट काइंड ऑफ बीइंग इंसुलेटेड टुडे व्हेन कंपेयर्ड टू द यूरोपियन मार्केट? Kospi 4.6, Japan Nikkei 2.1% up.
0: Well, we were very keenly observing Kospi since morning, and we found Hynix and Samsung, they were doing great. So I think there was excitement which was technology driven, and in the Nikkei we observed SoftBank taking the lead. So I think there were 2-3 companies. It was AI driven, it was tech driven, it was chip demand, semiconductor demand, which drove these markets contrary to the global sentiment. Also, we should not forget, I think the American markets are closed today because of the labor day.
1: Right.
0: So they had their day where they could think independently without taking cues. I was joking at my office, you know, with our stock market team, that today, you know, the cat is away and the mouse will play. You know, no cues from America, so you just do whatever you want to for a change. Otherwise, the markets normally follow. और मैं तो मजाक में कई बार कहता हूँ कि ऐसा लग रहा है कि करवा चौथ होता है ना हमारे यहाँ, तो उसका चांद निकलता है तो अर्क देख के पानी पिया जाता है। ऐसा लगता है हमारी मार्केट सुबह चांद निकलने के इंतजार, अमेरिकन मार्केट कब खुले तो हम पानी पिए, इस तरीके का माहौल मुझे दिखाई दे रहा। तो आज तो कोई दिक्कत नहीं थी।
1: बेहतरीन आपने उपमा दिया है। और गाजियाबाद से हमारे साथ इसी के साथ मनीष जुड़ रहे हैं। मनीष जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार मार्केट मंत्रा टीम, और कोहली जी को भी बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार मनीष।
3: सर, अभी आपको सुन रहा था, आपने एक बड़ी अच्छी सी बात बताई, बता रहे थे कि कभी कभी ना नहीं इन्वेस्ट करना बेचना भी एक स्ट्रेटेजी होती है। आई थिंक ये रिटेल के लिए आपने रिटेल इन्वेस्टर को माइंड में रख के बोला होगा, लेकिन उनके लिए जो एक SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड पे रेगुलर कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उनके लिए भी ये स्ट्रेटेजी क्या अप्लीकेबल होगी? दे शुड स्टॉप SIPs और वॉच, और दे शुड कंटिन्यू एज दे आर डूइंग? मतलब बेसिकली अ गुड अमाउंट ऑफ आर सेविंग्स आर गोइंग इन एज ए SIP, तो अभी का जो एज ए मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली की तरफ से तो जा रहा है, बिकॉज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो FIAs जिस तरह से वो पैसे निकाल रहे हैं आ रहे हैं, बट जो लोकल जो है उनकी तो SIP ठीक ठाक आ रही है। तो एज ए मिडिल क्लास मैं समझना चाहूँ, क्या स्ट्रेटजी उनके लिए भी है या देश?
0: जी देखिए देखिए मनीष, अगर तो आपकी SIP जो आपने म्यूचुअल फंड में किया हुआ है, अगर वो NAV अच्छा मुनाफा आपको मिल रहा है, तो फिर मैंने जो अभी पहले बोला था वो आप उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और कुछ समय के लिए अगर आप रोक भी देंगे तो कोई मुझे इतना इसमें खराबी नहीं दिखाई देती है। पर अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है, NAV आपकी इस टाइम बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पर प्रॉफिट हो रहा है, मेन बात जो मैं कहना चाहता था प्राची और निशित, कि प्रॉफिट हो रहा है तो इस समय थोड़ा सा बुक कर लीजिए। और अगर आपकी NAV, अब ये मनीष मुझे नहीं पता आप कौन से फंड में हैं, कितनी NAV है, तो ये थोड़ा सा आप इसमें स्पेसिफिक में जाना पड़ेगा। आपकी बात का बहुत सटीक उत्तर तो तब दिया जा सकता है, पर अब तक जो मैंने बोला है आप सुन रहे थे, मैंने आपकी बातों से लगा, उसमें से आप अंदाज निकाल सकते हैं।
1: मथुरा से हमारे साथ कुंज बिहारी जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: धन्यवाद। आई

0: पूछना चाहूंगा कि ये अपना गोल्ड कौन सा समय ठीक महसूस करें जैसे आपका उतार चढ़ाव कोई चल रहा है, और दूसरा सवाल शेयर मार्केट के अलावा और कोई अच्छी जगह है जहां हम सेफ अपना इन्वेस्ट करें, और तीसरी एक छोटी सी बात अपने कोली सर से है, ये पूछना है हमसे कि अगर ईरान अमरीका का युद्ध खत्म हो जाता है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध खत्म हो जाता है, इसमें इन दोनों चारों पार्टियों को किसको क्या बेनिफिट मिलेगा इतना बर्बादी होने के बाद?
1: चलिए, गोल्ड का आपने कहा, गोल्ड का तो मुझे भविष्य उज्जवल नज़र आता है, क्योंकि आपने तीन पूछे हैं तो मुझे छोटे छोटे जवाब देने पड़ेंगे। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में गोल्ड बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है, शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रहेंगे। शेयर मार्केट के अलावा आपने पूछा और कहाँ, तो ऐसे समय में जब निवेश करना हो तो आप जो फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो सॉवरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, RBI के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, तब तक के लिए निवेशक एक तरह से रिसेस ले सकते हैं। रिसेस होती थी ना जब स्कूल में हम छुट्टी हो जाती थी, कुछ टाइम के लिए पढ़ाई बंद हो जाती थी, तो आप एक रिसेस तौर पे इन पे ले सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर आगे बढ़ रहा है। दूसरा, इन्होंने पूछा जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो आपके मुंह में पहले तो घी शक्कर, अगर ये युद्ध खत्म हो जाता है और फिर क्या आपस में ये गले मिल लेंगे? अब तो मैं यही कहूंगा कि अगर खत्म हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, पर कुंज बिहारी जी, मुझे यहां से कुछ बहुत ज्यादा अभी खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। काश आपकी बात सत्य हो, आप पहले बहुत दिनों बाद मुझे कोई ऐसे व्यक्ति मिले जो कह रहे थे कि ये लोग आपस में गले मिल जाएंगे, पर अभी मुझे कोई ऐसा आसार तो नहीं नजर आ रहे। निश्चित और प्राची, मेरे ख्याल
2: तात्पर्य ये था कि अगर इस तरीके की जो युद्ध चल रहे हैं वो अगर सेटल हो जाते हैं तो किसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये किस चीज, ये कौन से नाक की लड़ाई,
1: क्या खोया क्या पाया बाद में? देखिए, मुझे लगता है युद्ध में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, केवल मानवता हारती है, नुकसान जान माल का नुकसान होता है। तो एक लाइन में जवाब दूं तो यही है।
3: Right, and on to some other stories. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate and address the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai tomorrow evening. The theme of GFF 2026, one of the world's largest and most influential annual fintech conferences, is Potential to Impact Agentic AI, Tokenization, Quantum, Trusted, Connected, Global Systems for Inclusive Finance. According to an official press release, GFF 2026 seeks to build on India's leadership in digital payments and financial inclusion and move from potential to impact. The discussions will focus on how AI, programmable finance, quantum technologies and other critical and emerging technologies can create trusted, inclusive and measurable outcomes for citizens, enterprises and economies globally. Since 2020, Global FinTech Fest has emerged as a leadership platform bringing together policymakers, regulators, central banks, financial institutions, fintechs, technology companies, investors, academia, and other global stakeholders to discuss and shape the future of finance. The 7th edition will run till 11th of September 2026 in Mumbai.
2: Delhi se Deepak hamare saath jud rahe hain. Deepak ji, sanshipt mein apna sawal poochiye please.
0: Namaskar ma'am.
2: Ji.
0: Mera kuch nahi hai, jaise market down hote to liquid fund ke jo interest hai wo bhi down hota hai ya wo same chalta rehta hai?
1: दीपक, लिक्विड फंड्स के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, जो उस पर रिटर्न होता है, वो वेरी करता रहता है। वो डिपेंड करता है कि डिमांड और सप्लाई पे, कि कितने लोग लिक्विड फंड्स में, जो श्रोता नहीं जानते उनके लिए जल्दी से मैं बता दूं, लिक्विड फंड्स होते हैं जो 2-3 दिन के लिए आप पैसा रखते हैं, उसमें आपको अमूमन मैंने देखा है करीब 6-7% डिपेंडिंग ऑन डिमांड सप्लाई इतना रिटर्न आता है। तो वो ऊपर नीचे होता रहता है दीपक उसमें, पर वो रिलेटिवली सेफ माने जाते हैं। और बहुत ही छोटे टर्म के लिए जब किसी को पैसा रखना हो तो बजाय इसके कि सेविंग्स में पड़ा है, तो बहुत लोग इसमें इसको खेल को करते हैं और बड़ा बड़ा कामयाब तरीके से करते हैं।
3: Moving on to crude, the global crude oil prices climbed to near 6-week high as renewed strikes over the weekend in the Strait of Hormuz heightened concerns over supply disruptions. Brent crude was trading 1.1% up at $97.37 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading 0.8% up at $92.20 per barrel when reports last came in.
2: भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत आज लगभग 1.5% फिसलकर 1,52,703 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी की कीमत 1.5% से अधिक बढ़कर 2,31,650 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। शरद जी, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तमाम श्रोताओं के तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
3: Thank you so very much, Sharad ji. And before we close, a reminder of the headlines once again. The benchmark domestic indices decline. Sensex slips nearly 400 points. Nifty settles below 23,800. The global crude oil prices rise. And Prime Minister Narendra Modi to address the Global FinTech Fest 2026 in Mumbai tomorrow. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत

0: நேரத்திலும் செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரிணி. रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
3: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृहमंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी ढील देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के महानिदेशक डॉक्टर साइमन हेक के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में आलू के बेहतर बीज और रोपण सामग्री उपलब्ध कराने, किसानों की समस्याओं के समाधान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा केंद्र के बीच सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने कहा कि आगरा स्थित केंद्र को दुनिया की उन्नत आलू प्रजातियों को भारत लाने और देश की अलग अलग जलवायु के अनुकूल आलू की नई किस्में विकसित करने में मदद करनी चाहिए। इससे आलू किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीटों और पुदुचेरी की 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लॉट से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड में व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में कल सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी।

0: ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவ்தாரணி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे. वे राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है.

0: उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत करना तथा संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के महानिदेशक डॉक्टर साइमन हेक के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में आलू के बेहतर बीज और रोपण सामग्री उपलब्ध कराने, किसानों की समस्याओं के समाधान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा केंद्र के बीच सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा, अनुग्रह राशि और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना सहित कई मुद्दे उठाए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना फिलहाल स्थगित रहेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कल औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता डॉ. फारूक अब्दुल्ला और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी तथा विधु विनोद चोपड़ा मौजूद रहे। महोत्सव में 40 से अधिक देशों की 130 से ज्यादा फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इसका आयोजन श्रीनगर, गुलमर्ग और जम्मू में एक साथ हो रहा है। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में कल सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। किताबी मुकाबले में शीतल का सामना बुधवार को कजाकिस्तान की एजादा सेदान से होगा। कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईतिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. The Defence Acquisition Council, DAC, has cleared capital acquisition proposals worth 1,10,000 crore rupees for the Defence Forces. Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the Council held yesterday under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh.
3: The Council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN.

0: கேட்ட நிகழ்ச்சி நினைவில் நின்றவை. இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரிணி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे। वे राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना अब पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में

0: भारत के नेतृत्व को और मजबूत करना तथा संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा, अनुग्रह राशि और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना सहित कई मुद्दे उठाए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना फिलहाल स्थगित रहेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई में इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में पारदर्शी नीतियां, सुशासन और निवेश के अनुकूल माहौल के साथ विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की मजबूत सड़क और रेल संपर्क तथा आधुनिक लॉजिस्टिक व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कृषि उद्योग, सेवा, खाद्य प्रसंस्करण और कपड़ा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। लक्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए ताकि वह मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को बेहतर ढंग से दर्शा सकें। श्री बेटेल ने सुरक्षा परिषद की वीटो व्यवस्था को द्वितीय विश्व युद्ध के समय की व्यवस्था बताते हुए इसमें बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसके ठिकानों पर फिर हमला किया गया तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी तेल और गैस प्रतिष्ठानों समेत ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में कल सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना बुधवार को कजाकिस्तान की इजादा सेदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Defense Acquisition Council, DAC, has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the Defense Forces. Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the council held yesterday under the chairmanship of Defense Minister Rajnath Singh.
3: The council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN recce vehicles, high mobility vehicles HMV, self-propelled mechanical mine layers MML, advanced light helicopters ALH, trawl tanks and Sarvatra bridge system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudhra radars, design and development and subsequent procurement of marine gas turbines.

happened to her?

0: ஒலித்த சூரியகாந்தி படத்தின் பாடல்களை பாடியவர்கள் டி எம் சவுந்தரராஜன், ஜெயலலிதா, எஸ் பி பாலசுப்ரமணியம், மனோரமா ஆகியோர். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரிணி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे. वे राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है. उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे. प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे. श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे. इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत करना तथा संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है. गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया. इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की.
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है. ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है.
1: इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी

0: क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा, अनुग्रह राशि और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना सहित कई मुद्दे उठाए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार बैंक कर्मचारियों, ग्राहकों और बैंकिंग क्षेत्र के हित में संवाद और आपसी सहमति के जरिए मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्यनिकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल ने संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। श्री बेटेल ने सुरक्षा परिषद की वीटो व्यवस्था को द्वितीय विश्व युद्ध के समय की व्यवस्था बताते हुए इसमें बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील जैसे बड़े देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी भूमिका मिलनी चाहिए। श्री बेटेल 7 से 9 सितंबर तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फल महोत्सव का कल औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता डॉ. फारूक अब्दुल्ला और प्रसिद्ध फल निर्माता रमेश सिप्पी तथा विनोद चोपड़ा मौजूद रहे। महोत्सव में 40 से अधिक देशों की 130 से ज्यादा फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इसका आयोजन श्रीनगर, गुलमर्ग और जम्मू में एक साथ हो रहा है। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में कल सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना बुधवार को कजाकिस्तान की एजादा सेदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुईटिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस राघु। The Defence Acquisition Council DAC has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the defence forces. Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the council held yesterday under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh.
2: The council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN recce vehicles, high mobility vehicles HMV, self-propelled mechanical mine layers MML, advanced light helicopters ALH, trawl tanks and Sarvatra bridge system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudhra radars, design and development and subsequent procurement of marine gas turbines MGT. Arudhra radars will replace the existing air route surveillance radars at various naval air stations, and MGT, a warship propulsion system, will reduce dependency on foreign vendors. Meanwhile, for the Indian Air Force, approval was granted to various proposals to enhance the warfighting capability. Approval was also accorded for procuring ground-based multipurpose jammer and installing Defence Forces Secure Access Card system. The Defence Ministry said 98% of total procurement will be made from the Indian industry. The CBRN recce vehicles will be capable of detecting, identifying, monitoring and marking of areas contaminated with CBRN agents. The HMVs will enhance operational

0: நேர்களே, இன்றைய இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை சாமிய சோல்கர் அவர்களின் தப்லா, சதீஷ் வியாஸ் அவர்களின் சந்தூரிசை ஆகியவை ஒலிபரப்ப கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் தொடர்வது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारुणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जाएंगे। वे राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना अब पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत करना तथा संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
2: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृहमंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई

हिस्सों में तेज से मध्यम बारिश हुई है। बरेली, एटा, शाहजहांपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी देश में सबसे अधिक बारिश वाले पांच जिलों में शामिल रहे। भारी बारिश को देखते हुए बरेली में अगले दो दिनों के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए करीब 15 किलोमीटर लंबी 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव दिया है। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा से गंगा एक्सप्रेसवे तक पहुंचने में करीब 30 से 45 मिनट लगेंगे। प्राधिकरण ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब से जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक 6 लेन की एलिवेटेड सड़क बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल शिलांग में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें न्यू शिलांग जलापूर्ति योजना की दूसरे चरण, 2 सड़क संपर्क परियोजनाएं, शिलांग सिविल अस्पताल में 30 बिस्तरों वाली आयुष सुविधा और माओखानों में विद्युत उपकेंद्र शामिल है। मणिपुर विधानसभा के 8वें सत्र के अंतिम दिन सदन ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3,848 करोड़ रुपए से अधिक की 31 अनुपूरक अनुदान मांगे पारित की। गृह मंत्री गोविंद दास ने बताया कि कामजोंग जिले में जले 23 मकानों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का आधार वर्ष 1951 होगा और राज्य सरकार इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाएगी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नाहरलागुन में राज्य कृषि सूचना केंद्र सह किसान छात्रावास का उद्घाटन किया। यह केंद्र किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, सरकारी योजनाओं की जानकारी और ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। भारत को UWW विश्व बेल्ट कुश्ती चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी का प्रस्ताव मिला है। इसमें नागा कुश्ती और अलिश बेल्ट कुश्ती शामिल है। इस संबंध में किर्गिस्तान में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। चैंपियनशिप 14 से 19 दिसंबर तक प्रस्तावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: சில நொடிகளில் தொடர்வது இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜயா பாரதி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे. गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इसके साथ ही यह महत्वपूर्ण परियोजना पूरी हो जाएगी. अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है.
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में. वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से. उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे. ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे. 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ.
1: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे. इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे. महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे. सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी. ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा. गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया. इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की. इससे पहले गृहमंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की. श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है. नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेविये बेटल से मुलाकात के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं. वहीं जेविये बेटल ने भारत के शांति प्रयासों और संघर्ष प्रभावित देशों के बीच सेतु की भूमिका की सराहना की. इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया. श्री बेटल 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं. विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पश्चिमी एशिया के साथ भारत के संबंधों पर संसदीय परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की. बैठक में उन्होंने खाड़ी और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ भारत के मजबूत संबंधों और व्यापार, निवेश तथा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग

0: पर चर्चा की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के महानिदेशक डॉक्टर साइमन हेक से मुलाकात की। बैठक में बेहतर आलू बीज, किसानों की समस्याओं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा केंद्र के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने भारत में उन्नत आलू किस्में लाने और अलग अलग जलवायु के अनुकूल नई किस्में विकसित करने पर बल दिया। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल आज से 11 सितंबर तक मेघालय के उमियम में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन में देश के 21 राज्यों और 51 कृषि संस्थानों से 400 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए करीब 15 किलोमीटर लंबी और 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव दिया है। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा से गंगा एक्सप्रेसवे तक पहुंचने में करीब 30 से 45 मिनट लगेंगे। त्योहारों को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रमुख खाद्य बाजारों में जांच अभियान तेज कर दिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अभियान के तहत करीब 2300 किलोग्राम लावारिस खोया, धाप और मक्खन जब्त कर नष्ट किया गया। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। एशियाई खेल 2026 जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित होंगे। हालांकि कुछ खेल प्रतियोगिताएं 10 सितंबर से ही शुरू हो जाएंगी। भारत का अभियान 17 सितंबर तक टेक बॉल से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. He will also dedicate to the nation three important sections of the Western Dedicated Freight Corridor, WDFC, covering 326 route kilometers, developed at a cost of more than 20,700 crore rupees. The Prime Minister will also lay the foundation stone for three railway projects costing more than 9,700 crore rupees. In Maharashtra, the Prime Minister will inaugurate and address the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai this evening. The theme of GFF 2026, one of the world's largest and most influential annual fintech conferences, is Potential to Impact, Agentic AI, Tokenization, Quantum, Trusted, Connected, Global Systems for Inclusive Finance. The GFF 2026 seeks to build on India's leadership in digital payments and financial inclusion and move from potential to impact. The Defence Acquisition Council, DAC, has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the Defence Forces. Our correspondent reports that the approval was taken during the meeting of the Council held yesterday under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh. The Council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN recce vehicles, High Mobility Vehicles HMV, Self-Propelled Mechanical Mine Layers MML, Advanced Light Helicopters ALHs, Trawl Tanks and Sarvatra Bridge System for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudhra Radars, design and development and subsequent procurement of Marine Gas Turbines MGT. Meanwhile, for the Indian Air Force, approval was granted to various proposals to enhance the war-fighting capability. The Greater Noida Industrial Development Authority, GNIDA, has proposed separating freight and passenger movement in Greater Noida and constructing a 105-meter wide road up to the Harpur Bypass to improve connectivity with the Ganga Expressway. The proposal was discussed at a meeting chaired by the Industrial Development Minister Nanda Gopal Gupta in Lucknow yesterday. Luxembourg Deputy Prime Minister and Foreign Minister Xavier Bertel has backed India's bid for a permanent seat in the United Nations Security Council.

நிம்ம